Sumita, druma da lașo bine, suha sini, sumatura mașini.

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आज मंगलवार है। सख्त संवत 1948 के आषाढ़ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 30 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी आज की पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आपने जून के है रेडियो गोल्डन सिटी चैनल FM बैंडेड 106.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस सब

0: बच गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

रहे थे अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में गाए गीत। इसके साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
3: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कान्हाराम चौहान जी का।
3: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल, सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
3: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
3: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
3: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ
3: जी।
1: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
3: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
3: जी।
1: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है
3: जी। श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं
1: जी। तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
3: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है
1: जी। हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
3: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
3: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पति

0: शक्तियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है, यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे, चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए, इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है, यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही, पर अजीत जी अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विवेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
0: जी,
1: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी,
1: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
1: सबको गले लगाना,
2: सब

0: दीपक से सीखो जितना,
1: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खो देंगे तालाब बड़ा सा। बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम। राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
4: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
5: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
6: काम काम काम, सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काम काम काम।
7: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
8: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता।
7: कू कू।
9: मेरा भी कुछ यही हाल है।
6: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
7: क्या
10: क्या
7: क्या?
6: पूजा सब तक कोयल गाए,
7: पूजा
6: सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
3: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
8: जो आज्ञा महाराज।
7: दम लगा के कू।
9: हईशा।
7: दम लगा के कू।
9: हईशा।
6: गाओ गाओ गाओ, शाबाश शाबाश, सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम। चलो उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। गाओ गाओ गाओ गाओ गाओ गाओ गाओ। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा दाल फुला कर कुप्पा। गाओ गाओ गाओ। अरे पपीहे ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? गाओ गाओ गाओ।
9: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
6: गाओ गाओ गाओ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
9: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब। अरे वाह जनाब, ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा। छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
6: गाओ गाओ गाओ।
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।
0: बरखा आई पानी लाई, साफ स्वच्छ पानी, हर पानी से अच्छा होता बारिश का पानी। बरखा आई पानी लाई, साफ स्वच्छ पानी, हर पानी से अच्छा।

0: सचमुच कितना गंदा है इस धरती का पानी, पपीहा ना पिए दूजा पानी, हाँ पपीहा ना पिए दूजा पानी, पपीहा ना पिए दूजा पानी।
1: इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ भौ भौ, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ भौ, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: गाँ, गाँ, गाँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काम काम शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो, यही दंड हो।
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है।
5: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं।

0: गर्मी है ना
1: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
2: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
1: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमर मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
3: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
2: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यार से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
3: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
1: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
2: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो।
3: पिए दूजा पानी, कब आएगी बरखा, कब बरसेगा पानी, कब आएगी बरखा।

0: पानी, बिन बारिश बिन पानी कब आएगी बरखा, कब बरसेगा पानी। प्यासा पपीहा मर ना जाए बिन बारिश बिन पानी, बिन बारिश बिन पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कौआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी,
2: अरे
1: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: नमस्कार।
1: उमंग उमंग
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर में सुनेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। श्रोताओं, दिन का 1 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में यमुना जल समझौते को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्री शर्मा ने 29 जून के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस समझौते से राजस्थान की धरती को पानी मिलेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की पानी की पीड़ा को समझा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राज्य को केंद्र सरकार की ओर से कई सौगात मिली हैं।
1: यह योजना लगभग 34,000 करोड़ रुपए की योजना, इसमें 295 किलोमीटर तीन पाइपलाइन से पानी जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी सौगात है राजस्थान के लिए 12 साल के अंदर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, कल जो समझौता हुआ है हमारा यमुना जल का काम हो, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, नॉर्दर्न जयपुर रिंग रोड हो, अमृत भारत रेलवे स्टेशन हो, वंदे भारत ट्रेनें हो, और यही नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान में पहली साल में राजस्थान माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत, स्वतंत्र और जवाबदेह संसद ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति और नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें लोकतंत्र की आत्मा, संवाद, सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा को और मजबूत करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रदेश में आज रात 12 बजे से विकसित भारत गारंटी

0: फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना लागू हो जाएगी। इसके साथ ही मनरेगा से लगभग 1,00,000 काम VBG रामजी में ट्रांसफर हो जाएंगे। मनरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने बताया कि प्रदेश में कुल मिलाकर 6,00,000 काम VBG रामजी में कराने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए राजस्थान को 1200 करोड़ रुपए का बजट मिला है। नई योजना में प्रशासनिक कामों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्राविधान किया गया है। प्रशासनिक मद में कुल बजट बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इस राशि से 1,03,00,000 नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। बालोतरा के पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य रिफाइनरी परिसर को स्वच्छ, हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। रिफाइनरी प्रबंधन के अनुसार इस विशेष अभियान के तहत परिसर में 21,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी यहां 20,000 पौधे रोपे गए। वृक्षारोपण के साथ साथ परिसर में साफ सफाई, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। केंद्र सरकार ने माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार करदाता आगामी 31 जुलाई तक अपनी अपील दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने इसके लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की थी। मंत्रालय ने बताया कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर बढ़े दबाव और तकनीकी दिक्कतों को लेकर विभिन्न हितधारकों से मिले ज्ञापन के बाद ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में पुलिस के विशेष जांच दल SOG ने फर्जी FMAG सर्टिफिकेट के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। SOG के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि विदेश से MBBS करने वाले इन आरोपियों ने भारत में पंजीयन के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाया था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी चैनल FM 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम बनिहारी।

0: लेकर बैठी है, कुछ ना कुछ तो मेरी परेशानी है, कुछ ना कुछ तो कुछ समस्या है कि है। तो हमेशा हंसते मुस्करा तो रहना सीखी है कि हम लोग भी
1: लेकिन एक बात और भी है जीवन में, पहलू यह भी है कि कहे स्वभाव ना आपको बदल को नहीं सकता
0: जी,
1: चाहे कितो भी उम्र में घात दो तो वो बदले कौन है। तो देखो लखन मैंने वो लखन हमेशा लाख बरस भी बन जाओ तो आदमी ना उड़ा ही रहा है, बदलाव कदे संभव को नहीं, बदलाव संभव मेरे खुद रे प्रयासों से हो सके। आपको कहानी के अकल शरीर उपजे दिया लागे डोम, तो दियोड़ी तो कदे कहना समझ में आवे को नहीं, आसे आप मन की उपजोड़ी जो मेरे समझ में आसे, और कदे खुद ना आत्म एहसास हो जावे तो व्यक्ति आप बदलाव जरूर कर सके। बाकी जब तक खुद रो मन सो अंत सो एहसास नहीं जागृत हो जब तक आपको कुछ भी बन कर सको। और भी जो नीतू बहन एक भी जीवन सत्य है और कटु सत्य है कि सुख और दुख जीवन में हमेशा आता रहे, दुखरी घड़ी में अगर आप मुस्कुराता रहे तो आपको गुंडाई जवा, क्योंकि जीवन में दोनों रो पड़ाव आना निश्चित है, यह कोई जरूरी को नहीं कि हमेशा सुखी रहे और यह भी कोई निश्चित को नहीं कि हमेशा दुखी रहे। तो दुख भी जीवन में आसे और सुख भी जीवन में आसे, मुस्कुराना हंसना ये रो परिभाषा रो मतलब यह को नहीं कि हमेशा दुखरी घड़ी में दिखे हा हा पी पी करता रहो या मुस्कुराता रहो, कोई मिले तो भी मुस्कुरा, ये सो मतलब यह है कि जीवन में जो भी परिस्थितियों समय आई है वो सामना करो, अगर दुखरी घड़ी भी आई है तो वो ना अपना सहन करना ही पड़ से, क्योंकि वो रो कोई अपने विकल्प को नहीं, जो परिस्थिति आपने साथ हो जाती है जो परिस्थिति आप पर बड़ी जीत जावे वो ना सामना करना और वो बाद में जीवन आगे बढ़ाना, यह लक्ष्य निर्धारित हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं रहते जब तक जीवन में कोई महत्व बने रह जावे, तो जब लक्ष्य सामने दिखाई देवे तो अपने आप अपना पथ पग मेरी तरफ अग्रसर होता है। और कोई भी विकट परिस्थिति में भी देख के खुद ना ढाय लेना मूर्खता है। और ये साथ ही बहुत बढ़िया अपन जीवन में फल मिल जावे और वो ना प्राप्त करके उछल जाऊँ ए भी मूर्खता है। हर परिस्थिति में संयम से जीवन जीना ए चातुर्यता है और वे में अपरी भलाई है
0: जी,
1: क्योंकि जो भी भगवान दिए उन्हें प्रसाद समझ के ले लेना और वो अनुसार आपके जीवन आगे बढ़ाना, ये व्यक्ति रो कर्म होना चाहिए। तो इस जीवन में कुछ फलसफो है जो आप आज थोड़ा सा बांट लिया सत्या से, बातों ही बातों में सत्या से बात हो गई ये बारे में, क्योंकि जीवन क्षणिक है और देखिए जाए तो बहुत लंबो भी है, पर कद एक क्षण आ जा सके आप ये जीवन से निकल जा सो अपने हाथ में जीवन को ही रह जा। तो जब तक जीवन है खुल के जियो मुस्कुराए के जियो, हर परिस्थिति में घबराओ नहीं, कोई भी जड़ी भी परिस्थिति आवे पूरे डट कर सामना करो और परिस्थितियों से हार के हाथ मत हाथ धर के नहीं बैठो, कुछ ना कुछ क्रियात्मकता रचनात्मकता सृजनशील ऐ बनोड़ो रहे इंसान तो उरे जीवन में नया आयाम आना निश्चित है, कुछ ना कुछ नई रोशनी पूरी जिंदगी में जरूर आते हैं, उम्मीद आप जरूर करें और कोशिश भी आज करें कि सखियों भी ये भावना ना अपनाएं कि आप जीवन हमेशा आगे रखें। तो ये साथ ही मित्र बड़े लगा सा है, पहले छोटे सो विराम तुम सब कुछ जरूरी संदेश और वे बाद में एक मिनट हो जी।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हमारी फुलरा श्यामारी सजनी, फुलरा श्यामारी सजनी, अब के थाने लिया गया पीड़ो ओम चो जो थाने से लिया श्याम।

0: तो गुंजन मैन अपन सुनो बढ़िया जोड़ो लोकगीत। और देखो लोकगीत सुना नहीं तो जी शोर हो जाए क्योंकि अपन जो था कह नहीं कि हमेशा चेहरों मुस्कुरा तो हंसो अच्छे लगे तो लोकगीत सुना नहीं तो देखो थकान भी जीवे नहीं वो सब दूर हो जाए।
1: देखो मेरा एक और कारण भी है कि ये देसी चीज है और हमेशा देखो देसी चीज है अगर वो अपन मन न प्रसन्न करे आप भले विदेश में भी जाए बैठो ने तो अपन आप आदमी मिले जाना चाहिए खुशी से भाई राज्य में राजस्थान में आपको की भी जाऊंगा था अपन जैसे मेरा आदमी मिले तो बोलो लाग बहुत बढ़िया लगे और भारत में भी जो कोई राज्य में जाऊंगा तो अपन राजस्थान में मिले तो बढ़िया लगे और भारत से बाहर जाऊं तो कोई भारतीय में जाओ तो बढ़िया लगे क्योंकि वो आप रहा लगे अपन मोहरा अपना है हमारी आप की चीज है। तो ये जो हर चीज देसी वे जो बढ़िया जा रहा है मैं आपको बात करूँ जो बाजार में दिखा आपको साग सब्जी फल फ्रूट जो भी आ रहा है तो ये मैं आपको देख सकते कि देखो देसी चीज आवे नहीं मेरी मौन गणो यार परदेसी तो मौन गणो और कारण है कि देसी साग सब्जी फल जो भी आ रहे वो रुत रहा है और रुत में जब चीज कोई मिलती नहीं तो वो कम केमिकल कम यूरिया कम पेस्टिसाइड कम रासायनिक उर्वरक और कोई तरीके से पेस्टिसाइड नोखने की जरूरत कम पड़े वो अपने आप हुए साथ में की एक अपने इतनी खूबसूरती थे एक और देखो की केयर कमरी जो है अपने राजस्थानी फेमस चीज है और आपो भी बड़ा मान सू चाव सू ये चीज में खाव स्वाद रे ला रहे और ताकत रे ला रहे खाव जो तो अलग बात है। एक और ये रे ला रहे कारण यह है कि आप जो भी बाजार से सब साग सब्जी लाओ जोगवार फली लाया ठीक है टेमसी लाया भिंडी लाया बैंगन लाया टमाटर लाया आलू लाया गोभी लाया जो भी लाया ये रीते देखो कि इन पौधा की हाइट कितनी हो से लंबाई कितनी हो से ज्यादा ज्यादा दो फुट घुटना तक रहे कमर तक रहे इससे ज्यादा कौन है तो ऐ की रहा करे कि ऐ फसलों बार बार ले होनी चाहिए एक बार टमाटर पौधो निकल से जितना टमाटर दे से मेरे बाद में वो फसल साफ हो से दोबारा वो बुआई करनी पड़े जी। तो जितनी बार बुआई हुई जो हमने खेती रही वो करनी पड़े उन्होंने फर्टिलाइजर को नौखे मैं उर्वरक नौखे पेस्टिसाइड नौखे ताकि बढ़िया फसल अपना केयर सोंगरी फल है।

साथ ही आप और शरीर में कोई ट्रिगर केमिकल प्रवेश करते हैं। ये वास्ते हमें बात करना चाहूँ सत्य ना कि हमेशा आप और एक चीज को देसी चीज है रितरी चीज है वो सेवन जरूर करना चाहिए। चल एक बार दो बार करी जब पर जरूर खाओ। हमें आप और एक रुतरा पीलू आवे रुतरा अलावा तो पीलू कभी बारह महीने ही तो नहीं और अपने आप जब तावड़ो पपरी जब पीलू पक्के देखा उसे था रात आना रात में पीलू बने ए जो तावड़ो तपे जो लुओ बाजे जो है पीलू पके तो पीलू पूरा आयरन नो घर है अपने शरीर में जाए पूरी ताकत है और पीलू रे सेवन तो ए पानी की मात्रा शरीर में बढ़ावे डिहाइड्रेशन नो कम करे और पाचक भी वे पेट नो साफ करने नो भी काम किया जाए शरीर में जो गंदगी जमोड़ी हुए तो वो ना भी निकाले तो पीलू हर रोग तो गुणकारी है। गूंदी पीली पीली केसरी अदरक गूंदी अगर छोटी आजकल विलुप्त होने कगार में आ रही है क्योंकि बहुत कम जगह में से हमें गूंदी आप रह गया लेकिन ये अपने देसी मेवो है ए भी तो आयरन से भरपूर है कि एक तो शरीर हड्डियों ने मजबूत करी कैल्शियम है ये में हड्डियों वास्ते सबसे ताकतवर है गूंदी और गूंदा तो भी अपने देसी में आवे और भी पेड़ों माथे वे न कि देसी मेवा है और रित मथे जो फल आवे जरूर सेवन करना चाहिए। अगे अपर एक बारला फल आवता को नहीं था हमें तो खूब बारला फल आवन लग गया और हमें तो किए कि खेती भी एक तरह का व्यवसाय है तो वो व्यवसाय में हर कोई यह प्रयास करे किसान भी कि वो ना बढ़िया मुनाफा रहे और फसल भी बढ़िया हो जाए। तो देखो मैं आप हर जगह तो पहुंच को नहीं सकूँ और हर चीज आप मिले है भी संभव है पर जो देसी चीज मिल रही है वो सेवन जरूर करना चाहिए। उन्होंने मान दो और उन्होंने बच्चों ने भी बड़ों ने भी बूढ़ा ने भी सबना सेवन करना चाहिए। तो कह अपने जो दियारे मे छोटा बोर आवे नहीं लाल लाल राता राता ये बोर भी फायदेमंद है ये भी बोलती हो कोई साल साल लगोड़ी है कोई छह महीने लगोड़ी है कई वर्षों से रोई में लगोड़ी है बढ़िया हर साल बोर आवे हर साल बोर फिरे कहीं आपको टपूगे कहीं नहीं जावे तो ऐसा फायदे की चीज है। अच्छा बोर रही जो पत्तियों में वो भी बकरी रिवाज सबसे सुधार करो पालो जी तो पालो कुत्तों शुद्ध है कि वो खान से बकरी भी जो दूध देने क्षमता है उसमें भी फर्क पड़ जा रही तो जानवरों में जो तो असर दिखा रहा है तो वो अपर वास्ते क्यों कम फैले हुए एक सोचने विषय है आप वास्ते कि आप देसी चीजों कई रूप से मान देना चाहिए और कितों उपयोग में लेते रहना चाहिए जैसे कि अपना जो देसी बेलों में काली चिबड़ी जो रुतरा आवे नी ए भी फायदेमंद है लेकिन काली चिबड़ी एक ऐसी चीज है जो छह महीने जो रुत में जो बेल लागी हुई नहीं जरूरत है वह में हो सके रसायन रातोड़ा भी व्यास कर ली युग में पर जो पुराने खेत है खड़ी ने जो मैं आप ही निपटता है तो उम्र उपयोग हो सके तो कर ले कर लेना चाहिए। और ये रे साथ ही खड़ी ना में जो गेहूँ बाजरी चना मूंग मोट जो भी रेनी ए पूरी तरह से केमिकल फ्री रहा करे क्योंकि खड़ी ना में पानी तेज चुके दर्द तो आवे पानी आए गड़ो हुए कई टाइम तक गड़ो हुए रहे पे अपने तो परंपरा अनुसार दिवाली माथे और रेजो चेक कर जमीन रोन पे बुआई करी जावे तो वो में बजे की है कि वहाँ सियाले में सियाले सियाले दिवाली सुले होली तक फसल आप मिले और सियाले में वो जमीन में रेजे सूझ नमी मिलती रहे तो उन्हें ज्यादा पानी पाने की जरूरत कौन पड़े और ओ जो गेहूं मूंग चना तैयार हुए मूंग तो हालांकि पहला आवे रहा गेहूं चना तैयार हुए वो तो दियाली रहा तो वो एकदम शुद्ध बिना केमिकल तैयार हो जाए तो अगर संभव है बाजार में कैसे खरीद भी सकता हो तो वो गेहूं और उपयोग करो जो पूरी तरीके से केमिकल फ्री है। और एक और विशेषता बताई इसके जो केमिकल फ्री गेहूँ अपने मिल जावे नी तो उन्हें चेक करने की तरीके अपन को आपको कैसे लिया और आपको उन्हें कह दियो कि मोनो केमिकल फ्री हमने कह दियो कि केमिकल फ्री है मोरे खड़ी ना रहे हैं अपन की ढाबड़े जो के बिना खड़ी ना है कि नहीं हालांकि ए तो अपन को नाम तो लिखो लो बने कि भाई ये मोरे ये खड़ी ना है वो खड़ी ना है लेकिन जो बिना केमिकल गेहूं है

जितो कम पानी ले मतलब वो मैदे आई गोया करे एकदम झट गिलो हो जावे तो वो देसी गेहूं श्रेणी में को ना तो हमेशा चेक करो अगर ले भी रहा हो तो इतना बेवकूफ मत बनिया कि अपन ठा नहीं पड़े ये तरीके से अपन ठा पड़ जाते कि वो गेहूँ सही है कि नहीं है जो आपको मांग रहा हो वही गेहूँ अपन दिया गया है कि नहीं दिया गया क्योंकि खड़ी अपने जैसलमेर में खासा है हालांकि वो मैं सारा ना तो मिले को नहीं क्योंकि फसल तो उतनी जो वहाँ तक रहे हमारे परिवार तक रहे आली जो काम करे उम्र वास्ते भी रहे बाजार में थोड़ा घना बिकन आवे लेकिन बेवकूफ मत बनो खड़ी ना होता है कि अपना बाजार में ठगी करे जो मत कर अपने ग्रामीण बहनों भाई सब समझदार है उन्होंने तो आपस में बत्ती नॉलेज है ज्ञान है उन्होंने केड़ा भाई खड़ी ना तो कुल मिलाए अपना तो विषय यही है कि सच्चा ना बताना समझाना कि ऋतु में जो चीज आवे वो जरूर सेवन करना चाहिए और उपयोग जरूर करना चाहिए और अपने सेहत वास्ते और स्वास्थ्य वास्ते बड़ा अनुकूल दया करे और वो शरीर ने एक नवीन ऊर्जा प्रदान करे तो नीतू बहन ए थी आज की नई बात जो कि है देसी चीजों से संबंधित हमें देसी की बात निकली है तो बड़े एक लोग सच्चा ने सुनाई दिया जाए ताकि सच्चा और मनोरंजन और अपना भी वह बनता है।

0: तो गुंजन मैंने देखो कि तो बढ़िया जेड़ो गीत सुनाया दियो था कि भाई चूंदड़ी मंगा दे ओ नंद के बीरा। देखो जद नणंद जो बीरो अपन चूंदड़ी मंगा दे तो जी सोरो होना स्वाभाविक है हैं।
1: तो बड़ा भी सोच समझ के बनो रहा है तेरा पुठा अखर है ये ना तेरा पुठा गीत है इन तेरी पुठी धुन है यान। तो आपको बचपन याद आए जो जरा ये गाना माथे आपको कोई में घूमर नृत्य करता था वो मैं एक गाना लेता था। समय समय की बात है लेकिन गाना जो तो है तरंग वो कभी कम गुण हुए है वो टाइम भी लोकप्रिय तो और आज भी कर्णप्रिय लोकप्रिय गाना में कहे गए थे। देखो नीतवन जीवन में आप कई पुरानी चीजों ना आगे लेके बढ़े जो आप ये गाना ये बात करिए बहुत पुराना है लेकिन आज भी यही खूबसूरती बरकरार है आज भी तो इस कर्णप्रिय है। तो पुरानी चीज कदे पुरानी वह को नहीं वो अपर वास्ते एक या तो धरोहर हो जावे और या अपर वास्ते अनुभव हो जावे। कोई भी पुराना अपर मन में भी कोई पुरानी बात हो तो अपर वास्ते अनुभव रूप ले सके
0: जी जी
1: और या बचे वो अपनी अपन दियोरी पुरखोरी कोई धरोहर है
0: जी।
1: तो पुरानी धरोहर अपने घर में जो है

0: बुजुर्ग हैं
1: जी
0: और इन्हों आदर करना, इन्हों सम्मान देना पर परम धर्म होना चाहिए। हरेक रो स्वभाव तो अलग हुए, कई बार बुजुर्ग गलत भी हो सके, लेकिन उन्होंने साथ अनादर और तिरस्कार जो किया जाए वो चीज गलत है। वो आपने जीवन में 60 बरस 70 बरस जिता भी निकालिया, अगर वो आपने स्वभाव में निकाले तो आप हमारा लाख लाख बरस जो है वो दूर में नहीं जाता, वो ज्यादा स्वभाव है और वो अपर वास्ते लाख लाख 10 वर्षों में बदले
1: बदले भी
0: होने। आप ध्यान है कि देखो 70 बरस ये व्यवहार में कटे तो कभी अपर वास्ते 10 बरस वास्ते बदले भी होने, तो जो जड़ो है उन्हें वे रूप में स्वीकार कर खुद में उसे अनुसार डाल देने, तो घर में जो परिस्थितियां पैदा हुई नी कलेजरी तनाव रही ए खत्म हो जाए और उन्होंने तन मन को आदर देवे। और अपना ध्यान है कि घर में जो बुजुर्ग रहे वो आपस से कोई बहुत ज्यादा मांग को नहीं करे, न उन्हें नखरो है न हमारे वास्ते कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजों की मांग, हमारी मांग इसी जो से कि आप उन्हें समय दो और उन्होंने टाइम से भोजन नाश्तो या हमारी दवाई हमारी तीज डिमांड रहा करे। कभी कण उसे तो कैसे मनो मंदिर तक ले जाए देखियो भाई, साधारण सी बात है कि आप परिवार में घर परिवार में रह रहे हो सपना जो है सब रहे घर में गांव में भी आप रहे बुजुर्ग बैठा है तो हमारी कितनी उमंगा है और कितनी हमारी ख्वाहिश है, तो अगर थोड़ो सी आप हमारी समय रहे अनुसार अपना ढाल दो और उम्र अनुसार चलता रहो तो किस कलेश रो काम हो न कि तनाव रो काम हो। और बुजुर्ग ही क्यों, बात अगर सेवा रही है तो सेवा हर ओ व्यक्ति या जीव चाहे जो कि असहाय जूता भी जानवर है ये सब असहाय श्रेणी में आया ये धरती में, क्योंकि मानो भगवान दिमाग या फिर दिमाग तो आपको कह सको हिसाब में दिए लेकिन बोलने की क्षमता हो गए तो नहीं कि वो आप दर्द या आप पीड़ा बता सके, तो असहाय जंतुओं की सेवा करना भी आप परम धर्म है। ठीक है तरीके से आप जीवन में ईश्वरीय देन हो कि आपने मस्तिष्क दिए सोचन समझने की क्षमता दी है और आपने वो सब क्षमता है कि आप खुद कमाए सको और दूसरों को भरण पोषण कर सको तो वे रूप में अपने जीव जंतु और वास्ते भी दया दिखानी चाहिए। और जितना जीव जंतु है दया का मतलब है को नहीं कि कोई भूखा जानवर आप मथे आई और आप फिर भी दया दिखाता उन्हें प्रस्तुत करता, क्या मतलब यह है कि बिना बात रो या अनावश्यक रूप से जीवों की हत्या नहीं करनी। कुछ लोग आप स्वार्थ के वास्ते खुद थोड़े से लालच के वास्ते लाभ के वास्ते निर्दोष मुख पद्धति जो जीव जंतु है हमारी हत्या कर दे और हमारे जो भी शरीर अंगों से जो भी उन्होंने फायदे हो सके वो आप फायदे ले, कैसे जहर निकले तो उन्होंने वो जहर तो पैसा मिले क्या ना हमारी हड्डियों से पैसा मिले क्या ना हमारी खाल से मिले, लेकिन निर्दोष जीव जंतुओं ने बिना बात रही सजा देनी ए प्रकृति के नियम के खिलाफ है। और मना यह लगे कि आप एक मनुष्य रूप में अगर ये धरती में आया हो तो आप और फर्ज ऐ रहना चाहिए कि आप उन्होंने सेवा करो हो सके जब तक हमारा ध्यान दो और मानवता के नाते आप और फर्ज भी होना चाहिए कि आप हमारी पूरी देखभाल भी करो और ज़्यादा आप हमारा नहीं कर सको तो कम से कम इतना तो करो कि आप उन्होंने बेवजह मरण नहीं दो।
1: जी जी
0: देखो बेवजह हमारी हत्या हुई बेवजह उन्होंने घायल किया जाए उन्हें मारा जाए ये सब ना आप रोक सको, क्योंकि अपन भगवान ये धरती माते भेजा है शोषण लेवन मुक्त रूप से जब आप शोषण छीनन को कहना अधिकार को नहीं तो वो जीव जंतुओं को भी शोषण छीनन को अपन या और कहना भी कोई अधिकार को नहीं, स्वच्छंद मृत्यु प्राप्त हो है वो एक अलग चीज है लेकिन तेरी वजह से असामयिक मृत्यु कहना देवनी वो गलत चीज है।
1: जी
0: तो ए, जीवन एक परम सत्य है और जिन्हें अपना सपना स्वीकार करना भी चाहिए और ये रूप में जहाँ पे जीवन अभी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि कोई भी जीव जंतु ना अपर वजह से परेशानी ले जाए।
1: तुमने मैंने एकदम बढ़िया बात बताई कि कोई भी जीव है वह ना जीवन रोतो रोतो अधिकार है जितो कि एक मनुष्य ना है, बस फर्क तो है कि आप रो बचाव खुद कर सकें और वो को नहीं कर सके आप रो भरण पोषण खुद कर सकें वो बेचारा
0: अबोला
1: जीव है, तो वो अगर अपने मुंगरे माथे आए जावे कोई जीव तो ना अगर अपन हाथ रोटी

0: देखो तो मर्सी भी कोनी बिगड़े नालो। और मान लो कोई जख्मी है तो वे जो अगर अपशु इलाज नहीं हुए नहीं तो देखो आजकल देखो अस्पताल भी का घना ही खुलोड़ा है जानवर का। और लोग एड़ा सारे सेवा भावी भी हो गया है कि एड़ा जो कोई जानवर है जो चोट ग्रस्त हो गया है या उम्र कोई समस्या है उम्र चलन फिरन में ना तो वे वो बराबर उपचार करे और वे वो ठीक भी होया है। अपर एक भी देख लो कि गौशाला है खुलोड़ है उमिन अगर कोई असहाय गौवंश है तो कहना कि भाई कोई भी उगर मालिक को नहीं तो वो उठ ले जाए कि उमारी पूरी देखभाल करे उमारो खान पान मतलब हर चीज उगर ध्यान रखे। और अगर वो की तरीके से चोटिल है या वो रोग ग्रस्त हो गया तो उमारो पूरा पूरा
1: पशु
0: उपचार भी
1: चिकित्सकरी
0: जी
1: सलाह वो लेके और पशु चिकित्सक में बुलाए गए जो जरूरी मेरा उपचार वे करा जो सिर्फ गोवंश को नहीं होती वो ऊंट
0: हाँ जी
1: बकरी जो भी आप एकला देसी पशु है उन्होंने साथ अगर कुछ गलत हो गए तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमें
0: जी
1: हमारी पूरी देखभाल की जाए। तो नीतू बहन ए तो हुई सेवा की बात लेकिन असहाय जीवन के साथ में असहाय व्यक्ति और भी अपन सेवा करें
0: जी
1: आपो घरे बुजुर्ग और ही सेवा करें क्योंकि वो आप आप है
0: आप रहे
1: जीव जंतु पर्यावरण की देन नहीं भी करे लेकिन मनुष्य आप रो काम आप कर सके ये कारण आपो ए नहीं सोचो कि कोई असहाय है तो उन्हें छोड़ दोगे। मनुष्य आप रो आपे कमावे आपका आप दिया भगवान कमावे खावे कई बार परिस्थितियां विकट हो जावे जो वो ये स्थिति में को नहीं रहे जो वो आप रो काम खुद कर पावे और आपके परिवार भरण पोषण कर पाओ।
0: जी
1: तो अगर एक अपन जीवन में कभी ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जिसको असहाय है और जिसकी स्थिति इतनी गंभीर हो रही है कि हमारे साथ कुछ भी हो सके कुछ भी गलत हो सके या उन्होंने खाना भी नहीं मिल रही तो वो जगह मतलब चार हाथ अगर बढ़ के ऊपर ये जीवन यापन में सहयोग कर दे तो भी मनुष्य ना सेवा रो काम जरूर करते रहना चाहिए। आप बिना बात कहना भी देवन जो है एक धारणा है कि ब्राह्मण ने भोजन कराना चाहिए अच्छी बात है कराना चाहिए लेकिन ब्राह्मण के साथ साथ जो तो असहाय दुर्बल कमजोर आर्थिक रूप से असक्षम लोग हैं वो ना अगर आपको सहायता दो तो शायद वो आपको धर्म ज्यादा पुण्य कमाए देते हैं आपको क्योंकि मनुष्य जो काम करे और धर्म पुण्य कमाने अर्जित कर रहे हैं तो पुण्य वही जगह भी आप पर होते हो तो कारगर होते कि आप ब्राह्मण अगर नहीं भी है और अगर कोई असहाय दुर्बल सामाजिक रूप से असक्षम है आर्थिक रूप से असक्षम है वो ना अगर आप सहायता दे दी तो वो भी आप पुण्य की श्रेणी में जाते हैं।
0: जी
1: मनुष्य ने ऐसी सोचनी दी आजकल कुछ लोगों तो देवनो नहीं देवनो थो माते निर्भर करे लेकिन एक थोड़ा सा दिमाग लगाया गया जरूर सोचना कि आपको जितना दे रहा हूँ और असल में उन्होंने कोई चीज की
0: जरूरत
1: जरूरत है या नहीं है आपको बिना बात में मतलब देता जा रहे हो और वो दुरुपयोग कर रहे तो वो जगह आप और पुण्य के फॉर्म आए
0: जी
1: तो आप और पुण्य चाहिए ही है तो कम जरूरतमंद नो कोई चीज दो ताकि मेरा काम आए वो चीज और अपन वाकई में चेहरी आशीष लगे।
0: जी तो बहुत बढ़िया बात बताई। देखो हमारी बातों दुनिया ही चलती रहते हैं हमें भी सखियन थोड़ा मनोरंजन करवाया जाए और थोड़ा बढ़िया जुड़ो लोग जी।

0: तो गुंजन मैन आप सुनियो बढ़िया जो लोग गीत गुंजन मैन आज एक बात करा सकियो तुम कि भाई देखो आप हण एड़े मौसम में ना आपकी त्वचा रो बचाव कोकर करो। देखो एक तो की है एड़ी गर्मी भयंकर और वो सु की है भाई हर टाइम तो आप घर में भी कोनी बैठा रहो या हुआ ही जानो बड़ी कम पड़े दिखी टाइम तो यह जो भीषण गर्मी सु आप जो त्वचा है वो थोड़ी काली भी पड़ जावी थोड़ी बेजान सी हो जावी तो उरे वास्ते आप की कर सको या घरेलू उपाय अगर हो जावे नहीं तो और बढ़िया है। वैसे ये भी तो यो है कि ये मौसम में ना मुल्तानी मिट्टी और नींबू वगैरह लगाए दो आपके शरीर में तो उसकी ठंडक भी पहुँचे और अगर चेहरे माथे कोई दाग धब्बा निशान है तो वो भी मिट जावेगा। और कुछ यहाँ भी कह कि भाई शक्कर हुई नहीं वो ज़्यादा कारगर सिद्ध हो गई यहाँ चीज़ों में ना।
1: देखो नहीं तो मैंने शक्कर का फायदा तो है किंतु संबंधित कोई बीमारी हुई वो मैं और देखो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ मैं वही देखा पाओ धूप तो झुलसो ही तो चाहे या देखो कोई बार बार अगर उनको ऐठान काली पड़ जाए नहीं पूरे जगह माथे नींबू और नींबू के साथ में शक्कर देखो नींबू माथे बुरका भी जावे शक्कर और थोड़ो सी हल्को सी बेकिंग सोडा
0: जी
1: ए लेके जितना भी आप जो कभी आप देखिए आप कोहनी हो जिसको काली पड़ोड़ी है या एंकल खुड़ी वाली जगह जिस वे जो जोर माथे वो मणियों काड़ो
0: काड़ो पड़े
1: तो अपने जो बगला है ये भी कदे डार्क हो जाए करे काली पड़ जाए करे तो ऐसी जगह ना साफ करना हमारी जो मैं कालो बन दूर करने वास्ते नींबू माथे शक्कर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले और वो ना रोज रगड़े तो रगड़न मतलब ये बनी कि हाँ चटपट पा पा रहे जाओ ना सिर्फ हल्के हाथ को मसाज करे बड़ी और 7-8 दिन आपको कर सो तो अपना रिजल्ट आना शुरू हो जाता क्योंकि एक दिन में तो कभी कोई ऐसा अपना दिखा को नहीं तो जो भी रेमेडी आपको अपनाओ चमड़ी के वास्ते स्किन वास्ते तो वो ना कम से कम 7-8 दिन करके देखो तो अपना मेरा रिजल्ट आना शुरू हो जाता तो ये भी एक करके देखो तो ये सूझ वो अपने कालोपन है चमड़ी जो जितनी जगह जगह मतलब वो निकलना शुरू हो जाता तो नहीं तो मैं ये साथ ही आज तो कार्यक्रम में विदा लेने वक्त आ गए सत्य से लेवनी सीख है लेवनी सीख है क्योंकि अगली बार नई चर्चा और जानकारी के साथ हाजिर हो तो आज ये कार्यक्रम में घना घना राम राम सत्य ना और लेता
0: घना घना राम राम।

0: With Neelam's report, this is Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
1: The Indian Meteorological Department, IMD, issued an orange-colored warning for very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka, Konkan and Goa for the next 2 days. Similar conditions are also expected over parts of Sikkim, Assam, Meghalaya, Kerala and Mahe, Sub-Himal and West Bengal for the day. IMD said a gradual fall in maximum temperatures by 4 to 5 degrees Celsius is expected over northwest India during the next 3 to 4 days. Meanwhile, the Met Department has forecast heatwave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh today. Benchmark domestic equity indices were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex was down 63 points to 76,665, while the Nifty dipped 9 points to 23,937 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and four states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. And Germany knocked out of 2026 FIFA World Cup after facing defeat from Paraguay in a 4-3 penalty shootout. With that, we end the midday news.
0: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया. दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू. पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया. ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान. और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर. मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया. अब समाचार विस्तार से. यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है. ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है. एक रिपोर्ट.
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं. इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है. श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की. उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं. समाचार कक्ष से निखिल कुमार.
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके. कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं. अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी. उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है. कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं. इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं.

0: 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बदनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम, विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया।

0: जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमरीका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमरीका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची।

0: मैं महविश रहमान।
1: फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं महल फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: फिल्म तपस्या का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ, एमजी हशमत के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये सदाबहार नगमा। राजा मेहंदी अली खान के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 20 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वासना फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज की सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जब जब फूल खिले फिल्म से। मोहम्मद रफी और नंदा की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का

इस गीत के साथ ही अब आज का फतेह पहाड़ नगमे कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: aquí la Saheli.
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजू जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है राजू जी?
1: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना,
1: हाँ,
2: ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है। बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती है।
1: तो ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताए कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि हाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए, हम तो यही कहेंगे।
3: बस इंतजार करना जरूरी है क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
3: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल करना बहुत जरूरी है, उन्हें अपने साथ शामिल करना बहुत जरूरी है। तो बुजुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है। साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, तो बातें हल्की फुल्की जिसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी हैं, पर उन्होंने आमतौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है, पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है। कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना सिर फंसा लिया है,
1: हाँ,
3: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक
1: मम्मी एक, एक संदेश मैंने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
3: तो ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो जाते हैं।
1: कुछ बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं,
3: हाँ,
1: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो पता चला खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
3: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है,
1: हाँ,
3: सिक्का निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिख कर भेजी। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को। और साथ ही मुहावरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना,
1: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम पानी पानी हो जाते हैं,
3: माता पिता पानी पानी हो जाते हैं, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं,
1: पोल खोल देते हैं, सही बात है। वैसे ये सब जो बातें होती है ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
3: तो मजा आ जाता है,
1: मजा आ जाता है।
3: सुनते हैं गीत।
4: अरे अरे ए,

0: हवा के साथ साथ,
1: अरे रे रे,
0: घटा के संग संग,
1: संभालना।
0: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल,
1: मुझे के साथ चल तू, यू ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल,
0: मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू।

0: ओ साथी चल,
1: तू मुझे लेके साथ चल, यूं ही दिन रात चल, संभल मेरे साथ चल, ले हाँ।

0: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते
1: हैं। झारखंड पहुंच गया। तो झारखंड से है अदिति गुप्ता, जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने महामारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, महामारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते,
0: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना। एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली है अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
1: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को यानी बच्चियों को ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे ये क्या हमारे नसीब में है। पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, तो उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
0: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
1: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
0: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की।
1: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजू जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
0: अपने पति तुहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
1: अब सरल भाषा बच्चों के लिए यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या होगा?
0: क्या होगी? बहुत अच्छी पहल है
1: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
0: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने ये संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
1: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो बीबीसी की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजू जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: तो इस तरह की बातें सुन के बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी।
0: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है
1: बेटे और
0: वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
1: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे
1: जी।
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे, तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले हैं। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमें रोज नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह उसे भी समय समय पर बदलना।
0: और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गाँव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब हाँ कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा उसके अंदर जो शक्ति शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती है,
0: प्रूव करती, प्रमाणित करती है कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं है या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत ज्यादा ये भी होता है।
1: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते

चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ खो गया। तुमको चेहरे से पर्दा हटाना

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं। जब अमावस्या होती है या जिन रात में चांद नहीं निकलता, तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं, देखो तुम्हें भी। जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम।
1: जाया करो
0: हाँ,
1: ट्यूशन स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाए ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी ही कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था, अब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी
0: अरे
1: समझ।
0: बाप रे,
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा।
0: अरे
1: मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है तो
0: हाँ तो
1: और
0: मतलब इन्हें
1: लोग
0: तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा

0: ये पता नहीं अभी ले लेंगे।
1: नहीं, और उन्हें ऐसा लगा ना कि पापा के पास में बाइक है या कार
0: हाँ
1: है, या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी
0: हाँ
1: सारी चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने हैं, ये मेरे
0: बिल्कुल
1: हैं। एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था। छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है, और उनकी मासूम हरकतें, नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीखकर सबको चौंका देते हैं। उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है, और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है, और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: देख रहे हैं। वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार वीसीआर के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए।
0: ओ
1: अब वीसीआर चलना बंद हो गया।
0: हाँ
1: जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
0: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: ना भी नहीं
0: नाम
1: लेती।
0: नहीं लेती, और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है।
1: हाँ
0: अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं कि
2: मेरी

सुन कर सुर जगे तेरी खुशबू लेकर फूल खिला जान मन तू है कहाँ ओ मेरी ओ मेरी ओ

पर कोई गीत लिखूं तेरे होठों में अमृत घोल दूं जान मन तू है कहां ओ मेरी

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद। कार्यक्रम है सखी सहेली, और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था, और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा। पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी। वो भी झटका अलग से लगा था। एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसमें
1: हाँ,
0: सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
1: ये
0: दिया
1: बहुत
0: था।
1: खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है,
0: बहुत ज्यादा
1: चोट भी
0: खतरा।
1: बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया। हाँ, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उसे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया करो।
0: हाँ, कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था, और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला, अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट
1: ओ
0: देगा।
1: बाप रे।
0: यानी उन्हें ऐसे लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना, पंचिश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
1: क्या क्या तो गजब गजब शरारते हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारते होती हैं, इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये
0: जी
1: भी सीखते हैं। तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब उल्टा
0: खोल लिया
1: पुर्जा
0: उसने।
1: बराबर कर देता था। उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको
0: खोल
1: उसको
0: देता
1: चाहिए
0: था।
1: पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूं मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
0: बहुत बड़ा
1: इंजीनियर
0: इंजीनियर
1: बना।
0: जी।
1: तो
0: तो
1: भाई
0: यानी
1: ये कुछ चीजें
0: उन्हें
1: होती हैं।
0: रोकिए टोकिए मत कि आपको लगता है कि भी इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते हैं ना उससे दीवाले गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं, पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे,
1: हाँ
0: क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं,
1: हाँ
0: तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
1: वो लगा सकते
0: वो
1: हैं,
0: लगा सकते
1: बिल्कुल
0: हैं, या फिर ऐसे
1: कागज लगा दे,
0: हाँ
1: एक
0: हाँ
1: जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो
0: हाँ वो
1: लगा
0: लगा
1: दें, और
0: दे।
1: कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहें कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
0: बहुत
1: तो
0: होती है।
1: बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स, देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
0: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से
2: काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं छूटते हैं बच्चे,
1: छोटे भाई बहनों के काट देते हैं।
2: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे। उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना
1: है। मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है। नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
2: गाने में है।

0: सोनाली देखिए, शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया। जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर, जान में जान आई।
1: ये नहीं, दादाजी नाना जी रहे तो
0: ना
1: उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है। वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है,
1: और
0: अकेलापन
1: लेकिन
0: नहीं
1: ये
0: लगता।
1: नहीं, परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं,
0: बिल्कुल
1: कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मुंह से सूद ज्यादा प्यारा
1: प्यारा
0: होता
1: होता
0: है
1: है।
0: कहा भी जाता है, तो वही वो अपने बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है।
1: बहुत काम आता है, पर अभी परिस्थितियां थोड़ी विकट
0: अलग हो
1: होने
0: गई है।
1: लगती हैं।
0: हाँ
1: एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है। दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्गों के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है। और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं, उस जमाने में कहाँ था सोशल मीडिया और टीवी। तो
0: बिल्कुल,
1: ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है ये।
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रहे हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का।
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सच मुझे ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। तो पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता। हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं। सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है। आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक।

0: and started a new journey in radio as RJ on community radio. Enjoying a lot. I love radio since my childhood. विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है.
1: क्या बात है
0: भाई. इस तारीफ के लिए शुक्रिया. विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया. और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं, हाँ डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का आसान है, बल्कि ये एक नया पड़ाव है, नई यात्रा है
1: जी.
0: और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा. ये तो सही बात है. एक खबरे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता. सही बात है, समय नहीं होता. बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता
1: है. पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ. नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे. तो पहल दोनों तरफ से होनी
0: दोनों
1: चाहिए.
0: दोनों तरफ से होनी चाहिए. और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है.
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है.
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है.
1: सुनते हैं गीत.

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: हाँ, सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई। ये
0: सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं,
1: पोल खोल।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं हैं, जाओ कह दो अंकल आए, कह दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, सब पोल खोल दिया। अंदर से पापा ने सुना, अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए।
0: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, हाँ। उसने काम का मतलब यही समझा कि हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
1: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
0: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें, और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है। जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माए कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
1: सब खा लिया।
0: तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे, हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
1: इसके लिए हम खूब मना करते हैं।
0: हाँ, खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, मान लीजिए एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गया, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है
1: जी
0: वो पूरा हो गया।
1: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण है कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाई होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाई है, घर वाले कह रहे हैं कि भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा का, अब बहुत ललचाए हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, घर वालों ने किसी ने देख लिया
0: तो पानी पानी हो गए।
1: तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए है ना, तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
0: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो

0: अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, तो ऑफिस में देते हैं पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
1: सचमुच। और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
0: फिर से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

जट यमला पगला दीवाना हरप्पा इतनी बात न जाना के के के ओ मैनु प्यार कर दी है सदे उत्ते वो मरती है के ओ मैनु प्यार कर दी है सदे उत्ते वो मरती है मैं जट यमला पगला दीवाना हरप्पा इतनी बात न जाना के ओ मैनु प्यार कर दी है हाय हाय हाय सदे उत्ते वो मरती है।

दुपट्टा पंखा पीन के मुलारे में मेले में अकेले तेरी बाजार सारे में कौन सा बनाया ना बहाना ना बहाना बहाना कमला पगला दीवाना हो रबा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है साढ़े उत्ते ओ मरती है।

0: ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। लोगों के घूंघट में मुकड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। प्रेम का राग पुराना पुराना पुराना है, जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी किसी बात न जाना के ओ मैं प्यार करती है, सदे उत्ते ओ मरती है, के ओ मैं प्यार करती है,
1: मरती है। तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई, हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
2: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखकर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और राजुल का नमस्कार।
2: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली सखी सहेली।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क।
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
2: एक टुकड़ा धुंधला सा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की है ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
3: बेखबर दोस्तों, नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी, और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
4: हाँ,
3: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
4: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
3: तो मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
4: मुल्क का गाना आप वो सुनाएं, पिया समाए।
3: जी,
4: बहुत अच्छा गाना,
3: बहुत पसंदीदा कव्वाली। कव्वाली है।
4: यस यस,
3: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
4: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने।
3: जी बिल्कुल, पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
4: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
3: जी,
4: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी है जो याद की जाएंगी,
3: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
4: जिक्र किया जाए,
3: दर्ज होती है आज के समय।
4: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
3: बिल्कुल।
4: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
3: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चलिए, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
4: जी हाँ, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप।
3: जी
4: बिल्कुल।
3: तो
4: आर्टिकल 15 से,
3: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
4: उस गाने की कहानी ये है के,
3: कोई दिलचस्प बात हो तो जरूर
4: बताइएगा। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ।
3: हाँ।
4: आप यूं समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
3: पड़ा है
4: इजाजत लौटा दो। हाँ। तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
3: अरे क्या बात है।
4: हाँ, उल्टा मतलब कि
3: सामान देना है।
4: हाँ, वो कह रहे कि वो कह रहे लौटा दो।
3: हाँ,
4: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जा।
3: हाँ,
4: ठीक है,
3: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर।
4: हाँ, तो उसमें जो गाना है। हाँ, वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मूवमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
3: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
4: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो। हाँ, लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ। तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना इंतजारी
3: जी।
4: हाँ,
3: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
4: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
3: क्या बात है, वाह।
4: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
3: वाह वाह, बहुत सुंदर
4: है ना।
3: तो
4: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी। हाँ, उसमें कुछ खुमारी। हाँ, राइमिंग की लाइन थी।
3: हाँ,
4: तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है। इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुहरी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
3: रंगी है,
4: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत है, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
3: बिल्कुल,
4: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
3: जी,
4: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट पिया समय है, हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलियाबाद वगैरह में, और
0: ये भी गाना लिख दो जल्दी।
1: हाँ, और हम जो है मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी।
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग
0: जी,
1: बनता है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसको कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है।
0: हाँ।
1: और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी यकजहती होनी चाहिए।
0: जी जी जी।
1: ठीक है। पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन
0: जी,
1: थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग है सातों पिया के,
0: सात रंग है सातों पिया के।
1: हाँ, सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब ये सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए
0: जी जी।
1: ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है, है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है।
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा। ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लगा चुनरी में दाग और फलाना, वो
0: छुपाओं के,
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की
0: जिंदगी, बिल्कुल बिल्कुल दो अर्थी।
1: हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे
0: रंग दिखाई।
1: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली।
0: वाह, क्या बात है,
1: सातों से मिलके भई मैं उजली, कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
0: क्या बात,
1: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई
0: जी जी।
1: और तू भी लगा के देख कभी, तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
0: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है। और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: जो बातियां प्यारा सब में है और सब सुनारा सब सखियों का पिया प्यारा सब में है और सब सुनारा
1: बाकिया मुझे ये बात
0: जानी है दिल ने की सब सखियों का पिया प्यारा।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा,
1: हाँ,
0: M.M. करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया गाना,
1: जी,
0: इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं।
1: क्योंकि मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची है।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका, भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी, और ये गाना जो है M.M. करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे पसंदीदा कंपोजर है वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा।

0: इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था
1: जी,
0: अगर तुम मिल जाओ,
1: जी,
0: बहुत बहुत मशहूर हुआ था
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना
0: जी,
1: कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउट स्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
0: जी।
1: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो ऐ बेखबर, ऐ बेखबर
0: जी जी जी,
1: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा जाने जा,
0: जी जी,
1: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
0: जी
1: जी।
0: तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
1: आई बेखबर
0: सुनते हैं ये गाना।

خبر هاتي خبر هاتي خبر هاتي خبر هاتي خبر هاتي خبر هاتي خبر.

तो दर्द उभरा, किसी भी मरहम से भर न पाया तेरी जुदाई का।

0: शिव कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है ना, इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था, जब मैं आया हूं उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूं तो ये दौर खत्म हो रहा था
0: जी जी,
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने वो गवा रहे वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूं। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आता है।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
0: जी,
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी जी।
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921, जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और

0: फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे, बहुत अच्छे गाने।
1: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए, वो तेरा नाम था,
0: वो तेरा नाम था, बिल्कुल।
1: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ, हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी।
0: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
1: अच्छा
0: तब मैं सूरत में रहता था
1: जी जी
0: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था, फिर
1: अच्छा
0: पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से
1: से
0: हुई।
1: हुई तो
0: हाँ, दिलीप सेन से हुई और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार।
1: जी जी जी
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना।
1: वहां तनवीर खान भी
0: हाँ
1: राइटर
0: हाँ
1: क्या।
0: हाँ हाँ तो मैं वही आ रहा हूँ तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो
1: जी
0: किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
1: जी
0: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए।
1: हाँ
0: तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी,
1: जी
0: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ क्या बात है।
0: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूं, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानता था, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे, इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: ओ क्या बात
0: हाँ,
1: है।
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई
1: जी
0: आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे, तो
1: जी जी
0: एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में,
1: जी
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी।
1: जी
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे,
1: जी
0: बाद में
1: जी
0: डायरेक्टर भी
1: जी
0: बने।
1: जी जी
0: तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुक्कू कोयली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से, रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था, फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुक्कू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूं मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे, वो मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊंगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
1: ओ अच्छा, क्या बात है।
0: मतलब, हाँ मतलब हाँ। पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का हाँ। लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये हाँ। गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
1: जी,
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, कि उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदोशी किया गया, तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है, ये उस टाइम की कहानी थी। और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे, तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कई वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
1: जी।
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है, तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है, और वो गाना इतना मतलब अलका जी ने गाया उसको और मुको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना, दीदी मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया। हाँ, तो ये तो गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स है के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
1: जी।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह, बहुत।
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना, मदहोशी है, मदहोशी है।

चाहत के नशे में चूर है दिल तेरा हुस्न मेरा पैमाना है तेरी चाह मेरी मनोशी।

0: chegou gente de Belo Horizonte. Mado Roji é, Mado Roji é, teri chaat ki Mado Roji é. Mado Roji é, Mado Roji é, teri chaat ki Mado Roji é. Mado Roji, Mado Roji é, Mado Roji, Mado Roji. शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा, मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी, उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज्में लिखी जाए। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई है, तुलसीदास की जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी है, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
0: उर्मिला सखी वे मुझसे, बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है, मैंने एक नया रास्ता निकाला पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक, जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था ना, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मुझे, मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
0: क्या बात
1: है। हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया।
0: जी जी।
1: वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका, उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है
0: जी।
1: और किस तरह से मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
0: क्या बात है,
1: पिछले 3 साल से लगातार। और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
0: क्या बात है,
1: तो हाँ बहुत शुक्रिया
0: और बहुत बढ़िया बात कही। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव है, तमाम वाक्यात हैं जिन की बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, आपके अल्फाज हैं। आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
1: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है और दुनिया में कुछ भी हो जाए ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
0: कुछ शायर आपने एक शायर से उम्मीद करते शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
1: जी,
0: कोई अशार?
1: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
0: क्या बात है,
1: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
0: क्या बात है,
1: मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ।
0: वाह वाह वाह,
1: मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वो आप आगे बढ़े, सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
0: क्या बात है,
1: सांपों को मैंने रहने दिया
0: उनके हाल पर।
1: उनके हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
0: वाह वाह वाह,
1: ठीक है, मैंने उनसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए ज्ञान जो है ना
0: जी,
1: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तकलीफी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
0: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: ये सीख है हम सबके लिए, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
0: जी।
1: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
0: क्या बात है, वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं और आपका बहुत बहुत
2: रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी।

0: युवा साथी सुन रहे हैं युवन। मैं अर्चना आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे कुछ खास विषयों को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे विश्व संसद दिवस, सादा जीवन उच्च विचार, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण और अनुशासन का महत्व, और साथ ही साथ हम बातचीत सुनेंगे पिछले 12 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र विकास हेतु किए गए प्रयास के बारे में। तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं विश्व संसद दिवस से। जी हाँ दोस्तों, विश्व संसद दिवस हर साल 30 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, यानी कि आज के दिन हम यह जो दिन विशेष है वो मना रहे हैं। यह दिवस लोकतांत्रिक प्रणालियों में संसद के महत्व को पहचानने और उन्हें मजबूत करने के संकल्प को दोहराने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। और यह 30 जून 1889 को राष्ट्रीय संसदों के वैश्विक संगठन अंतर संसदीय संघ IPU की स्थापना की गई थी, और इसी ऐतिहासिक दिन की याद में यह तारीख है वो चुनी गई है। और आधिकारिक मान्यता की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में एक प्रस्ताव पारित करके इसे आधिकारिक रूप से मनाने की घोषणा की थी। और संसदों के इस वैश्विक संगठन की IPU का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इस दिन को जो मनाने का उद्देश्य है वो है लोकतंत्र को सशक्त करना, जनता की आवाज और समानता और समावेशता को लाना। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और उनके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका है वो उद्देश्य है। और संसद को जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में सम्मानित करना है। और संसदों में महिलाओं और युवा सांसदों की भागीदारी को बढ़ावा देना और नई तकनीकों के साथ खुद को ढालना। तो हर वर्ष इस जो दिन विशेष है उसकी थीम रखी जाती है। अगर हम बात करते हैं पर 2026 की थीम के बारे में, तो इस वर्ष की थीम है मानव अधिकारों को अग्रिम पंक्ति में रखना, यानी कि पुटिंग ह्यूमन राइट्स बैक ऑन द फ्रंट लाइन। तो थीम के तहत इसको मनाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य वर्तमान जो वैश्विक संघर्ष चल रहे अभी और संकट है उसके बीच इंसानी अधिकारों और गरिमा की रक्षा में संसदों की भूमिका को दोबारा मजबूत करना है। और भारतीय संसद के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संसद अब तेजी से आधुनिक और डिजिटल हो रही है। भारत में ई ऑफिस और ई सुविधाओं के जरिए संसद को पूरी तरह पेपर लेस बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो श्रोताओं, यह जो दिन विशेष है वो दिन हमें याद दिलाता है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए संसद का स्वतंत्र, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह होना कितना जरूरी है। तो श्रोताओं, अब हम सुनेंगे बातचीत पिछले 12 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में और उसके विकास हेतु किए गए प्रयास श्री संजय व्यास के साथ।
1: गत एक दशक में पर्यटन के क्षेत्र में भारत सरकार के कार्य, पर्यटन किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण आधार होता है। यह केवल मनोरंजन और भ्रमण का माध्यम नहीं है, बल्कि रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा अर्जन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और क्षेत्रीय विकास का भी प्रमुख साधन है। भारत अपनी प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक स्मारकों, धार्मिक स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध संस्कृति और अतिथि संस्कार की परंपरा के कारण विश्व के प्रमुख पर्यटन देशों में शामिल है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर समुद्र तटों तक, थार के रेगिस्तान से लेकर घने वनों तक तथा विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के पवित्र स्थलों तक भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। पिछले एक दशक में भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को राष्ट्र विकास के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में विकसित करने के लिए अनेक योजनाएं, नीतियां और अनेक कार्यक्रम लागू किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना, देश की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करना, धार्मिक एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करना और भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इन पहलों के परिणाम स्वरूप पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की प्राप्ति हुई है। पर्यटन किसी देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। इससे होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, भोजन, मनोरंजन तथा अन्य अनेक क्षेत्रों को लाभ प्राप्त होता है। पर्यटन उद्योग श्रम प्रधान उद्योग है, इसलिए यह बड़ी संख्या में रोजगार को उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ और सद्भाव को भी बढ़ावा देता है। भारत जैसे विकासशील देश में पर्यटन का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक प्रमुख स्रोत है। पर्यटन के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का विश्व स्तर पर प्रचार और प्रसार होता है। इसी कारण भारत सरकार ने पिछले एक दशक में पर्यटन क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी है। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में स्वदेश दर्शन योजना, देखो मेरा देश प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के रूप में विकसित करना है। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म सर्किट, रामायण काल सर्किट, श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्किट, तटीय सर्किट, रेगिस्तानी सर्किट, आदिवासी सर्किट, इको टूरिज्म सर्किट, योग सर्किट आदि का विकास किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से सड़कों, पार्किंग स्थलों, शौचालयों, प्रकाश व्यवस्था, पर्यटक सूचना केंद्रों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का भी निर्माण किया गया है। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। बाद में सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत ऐसे पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जा रहा है जो पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकसित किए जाएं। भारत यह जो देश है, धार्मिक आस्था का एक महान केंद्र माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रसाद अर्थात पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव योजना का आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, अमृतसर, अजमेर, पुरी, उज्जैन, द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा अन्य प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों का भी विकास किया गया है। तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर आवास, सड़कें, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल और सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और धार्मिक कॉरिडोर नाम की योजना को भी बढ़ावा इन स्थलों पर दिया गया है। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ धाम परियोजना, महाकाल लोक परियोजना, अयोध्या विकास परियोजना तथा चार धाम परियोजना ने धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां प्रदान की है और इन परियोजनाओं के कारण देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत की जो संपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरें और सांस्कृतिक विरासत जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, पिछले एक दशक में सरकार ने इन समस्त स्मारकों के संरक्षण और उनके विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। अडॉप्ट अ हेरिटेज, इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐतिहासिक स्मारकों पर पर्यटक सुविधाओं में विस्तार किया गया है एवं साथ ही साथ सुधार भी किया गया है। अनेक किलों, मंदिरों, महलों और पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण तथा सौंदर्यीकरण भी किया गया है। सरकार ने विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों, मेलों और कार्यक्रमों का आयोजन कर भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रचार एवं प्रसारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, G20 सम्मेलनों के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक महोत्सवों ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को और भी सुदृढ़ किया है। इसी क्रम में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए ई वीजा प्रणाली को भी विस्तारित किया गया है। अब अनेक देशों के नागरिक ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से भारत का वीजा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप भी विकसित किए गए हैं, जिनके माध्यम से पर्यटक होटल, परिवहन, पर्यटन स्थलों और अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार ने भी पर्यटकों को सरल सुविधा प्रदान की है। आज भारत में UPI और अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियां व्यापक रूप से उपयोग की जा रही है, जिससे विदेशी और घरेलू पर्यटकों को लेन देन में सरलता प्राप्त होती है। भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं आरंभ की। ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे, लोक कला, हस्तशिल्प, कृषि पर्यटन तथा पारंपरिक जीवन शैली को पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण पर्यटन से स्थानीय लोगों का को रोजगार और आय के नए सुअवसर प्राप्त हुए हैं। इससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है तथा ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षण मिला है। राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय तथा केरल जैसे अनेक राज्यों में ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं ने विशेष सफलता प्राप्त की है और भारत सरकार ने साहसिक पर्यटन और पर्यावरणीय पर्यटन अर्थात इको टूरिज्म को भी साथ ही साथ बढ़ावा दिया है। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग और वन्य जीव पर्यटन जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों तथा प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का विकास किया गया है। सरकार द्वारा यह निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि पर्यटन विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। इको टूरिज्म से पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा स्थानीय समुदायों को भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति हुई है। पर्यटन उद्योग रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत है। पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया है। युवाओं को होटल प्रबंधन, टूर गाइड प्रबंधन, यात्रा प्रबंधन, भाषा प्रशिक्षण, खान पान सेवाएं और अन्य पर्यटन संबंधी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और इससे लाखों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से महिलाओं तथा ग्रामीण युवाओं को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण पर्यटन उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची और इस संकट से उबरने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न राहत और प्रोत्साहन उपाय लागू किए। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने देखो अपना देश नाम का एक अभियान चलाया और पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायों को वित्तीय सहायता और विभिन्न रियायतें प्रदान की गई। महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ और घरेलू पर्यटन ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए। धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। विगत एक दशक में भारत के पर्यटन क्षेत्र ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। घरेलू पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटकों के आगमन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। धार्मिक पर्यटन स्थलों पर व्यापक विकास हुआ है। पर्यटन अवसंरचना पहले की तुलना में अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनी है। डिजिटल सेवाओं ने पर्यटन को सरल और सुलभ बनाया है। ग्रामीण और स्थानीय समुदायों को पर्यटन से आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं। भारत की वैश्विक पर्यटन पहचान और भी अधिक मजबूत हुई है और यद्यपि पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी कुछ चुनौतियां यहाँ हमारे सामने हैं, जो कुछ क्षेत्रों में अभी भी आधारभूत सुविधाओं की जैसे कमी है। पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर भीड़ प्रबंधन की समस्या बनी रहती है। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में भी निरंतर सुधार की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पर्यटन प्रचार को और भी अत्यधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है और इन समस्त चुनौतियों का समाधान करके भारत पर्यटन क्षेत्र में और भी अत्यधिक प्रगति प्राप्त कर सकता है। पिछले एक दशक में भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में विकास के अनेक महत्वपूर्ण दूरदर्शी कदम उठाए हैं। स्वदेश दर्शन योजना, प्रसाद योजना, ई वीजा, डिजिटल इंडिया, ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन तथा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण जैसी पहलों ने भारत के पर्यटन उद्योग को नई दिशा प्रदान की है। इन प्रयासों से पर्यटन अवसंरचना में सुधार हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, विदेशी मुद्रा अर्जित में वृद्धि हुई है और भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई है। भविष्य में यदि हमारी सरकार, निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदाय मिलकर पर्यटन के सतत और समावेशी विकास के लिए कार्य करते रहते हैं तो भारत विश्व के सबसे प्रमुख पर्यटन देशों में अपना स्थान और अत्यधिक सुदृढ़ कर सकेगा। पर्यटन केवल आर्थिक प्रगति का साधन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव को विश्व तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। अतिथि देव भव की भावना के साथ भारत का पर्यटन क्षेत्र आने वाले वर्षों में और अधिक उन्नति करेगा और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। जय।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बातचीत पिछले 12 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र विकास हेतु किए गए प्रयास श्री संजय व्यास के साथ।

उजाला छाती पे आए चमक चांदनी, फोटो पे तेरे गीतों की माला, सांसों में तेरी खुली रागिनी। बैंड बजाऊंगा झूमके गाऊंगा, प्यार तेरा होगा बारात सजेगी, सजनी सजन होंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनारी से उदित नारायण की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे सादा जीवन उच्च विचार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सादा जीवन उच्च विचार यानी कि दिखावे और तड़क भड़क से दूर रहकर एक सरल जीवन जीना तथा अपने विचारों को महान, नैतिक और परोपकारी बनाना। यह जीवन दर्शन व्यक्ति को मानसिक शांति और समाज में सच्चा सम्मान दिलाता है। सादा जीवन का अगर हम अर्थ देखें तो सादा जीवन यानी कि सीमित आवश्यकताएं, दिखावे का त्याग, प्राकृतिक जीवन और संतुष्टि की भावना, भौतिक सुख सुविधाओं और अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह की होड से दूर रहना भी एक सादा जीवन के अंतर्गत आता है। और केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए फिजूल खर्ची न करना और प्रकृति के करीब रहकर सादगीपूर्ण तरीके से जीवन यापन करना और जो कुछ पास है उसमें खुश रहना और लालच से मुक्त रहना, ये है सादे जीवन का अर्थ। और उच्च विचार की अगर बात आ जाती है सादा जीवन के साथ, तो नैतिकता और सत्य यानी कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी और सही मार्ग पर चलना और समाज कल्याण और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना और हर परिस्थिति में अपने ज्ञान, अपनी सोच और समझ को विकसित करते रहना। ये हर जो परिस्थिति आ रही है, चाहे हमारे जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति आ रही है, तो उस कठिन परिस्थिति को एक सकारात्मक तरीके से लेना कि जो है वो कठिन समय आया है, वो समय है वो निकल जाएगा और ये थोड़े समय के लिए है और जो होता है अच्छे के लिए था। तो ऐसे जो विचार हमारे अंदर आते हैं ये एक उच्च विचार की श्रेणी में आते हैं। और बुद्धिमान और समृद्ध होने पर भी मन में घमंड न लाना कि अगर आप बुद्धिमान है, समृद्ध है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, तो ये आपका जीवन है वो सादा जीवन कहलाता है। तो इस सादे जीवन को है वो अपनाने से हमें बहुत सारे फायदे हैं। यानी कि जब हम इच्छाएं कम रखते हैं तो हमें तनाव कम होता है, हमें चिंता नहीं होती है, और जब हम तनाव नहीं हो रहा है, चिंता नहीं हो रही है, तो हम एक मानसिक शांति है उसके स्तर पर रहते हैं। तो जब हमारे जीवन में मानसिक शांति रहेगी तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से है वो जुड़ी हुई है। और आर्थिक स्थिरता यानी कि व्यक्ति खर्च रुकने से व्यक्ति कर्ज और वित्तीय समस्याओं से बचता है। यानी कि जब हम अगर व्यर्थ के खर्च कर रहे हैं और हम अपना जितना भी जो कह सकते हैं कि सेविंग है या जो भी हमें आय हो रही है उसको हम ऐसे ही वेस्ट करते जा रहे हैं, तो ऐसे में है वो हम अपने जीवन को आसानी से या साधारण तरह नहीं जी पाएंगे, उसमें हमें तनाव रहेगा। लेकिन जब हम सादा जीवन जिएंगे तो हम व्यर्थ का खर्च नहीं करेंगे और हमें कर्ज भी नहीं होगा और वित्तीय समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और एक जो सादा जीवन जो व्यक्ति जीता है, जिसके उच्च विचार होते हैं, साधारणता रहता है और उसको किसी प्रकार का घमंड नहीं रहता है, तो ऐसे

व्यक्ति ही अपने जीवन को है वो एक बिना तनाव के और एक आनंद के साथ है वो जीते हैं। तो ऐसे हमारे सामने बहुत से उदाहरण हम इतिहास में भी देख लेते हैं। तो हमारे भारत के इतिहास में जैसे APJ अब्दुल कलाम है, स्वामी विवेकानंद है, लाल बहादुर शास्त्री है, महात्मा गांधी है, ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। ऐसे महापुरुषों ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में पूरी तरह उतारा था और उनके पास संसाधन और पद की कोई भी कमी नहीं थी, फिर भी वो अत्यंत ही साधारण तरीके से रहते थे। उनके विचार पूरे विश्व को दिशा है वो दिखाते हैं। तो इस प्रकार से जो हम अगर आधुनिक युग में अगर इसकी प्रासंगिकता की बात करते हैं कि जो ऐसा समय है आधुनिक युग, इसमें सादा जीवन है वो रखना कितना जरूरी है और कितना फायदेमंद है। तो जब हम देखते हैं कि आधुनिक समय में व्यक्ति है वो सिर्फ दिखावा है, वो उसकी होड़ में लगा हुआ है, यानी उसके पास है वो मेरे पास होना चाहिए, सिर्फ दिखावा रहता है। फैशन के नाम पर देखो, हर चीज के नाम पर है वो हमें दिखावा दिखता है। तो सोशल मीडिया का जो दिखावा है उससे मुक्ति पाने के लिए हम इसको अपना सकते हैं। यानी कि आजकल लोग दूसरों को दिखाने के लिए महंगे कपड़े, गाड़ियाँ, छुट्टियाँ ये सब प्लान करते हैं। और यह जो हमें इस मानसिक जाल से है वो बाहर निकालता है यह दर्शन, कौन सा? सादा जीवन और उच्च विचार। जब हम सादा जीवन उच्च विचार को अपनाएंगे तो ये जो है वो दिखावे का जो एक कहते हैं जाल है उससे हम बाहर आ सकते हैं। और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण है, यानी कि जो इको फ्रेंडली जो लिविंग है, यानी कि सादा जीवन जीने का मतलब है कम से कम कचरा पैदा करना, संसाधनों का दुरुपयोग न करना, हमारी धरती को बचाने के लिए बहुत ये जरूरी है। तो जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो इको फ्रेंडली हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारे समय की बचत होती है, क्योंकि जब आप अनावश्यक चीज़ों को खरीदने, उन्हें संभालने, उनके बारे में सोचने में समय बर्बाद नहीं करते हैं तो वह समय आप अपनी हॉबी, अपने परिवार, अपनी खुद को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। तो आज के जो समय में है वो सादा जीवन उच्च विचार अपनाना है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन जब हम इसको अपना लेते हैं तो हमारा जीवन है वो बाकी की तुलना में है वो एक सिंपल, एक सामान्य सा और एक अच्छा सकारात्मक है वो हो सकता है। तो अगर हम अपने अंदर ऐसी जो हैबिट लाना चाहते हैं, अपने जीवन को ऐसा जीना चाहते हैं, तो हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं उसको अपनाना पड़ेगा। जैसे जरूरत और चाहत में अंतर समझो, यानी कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले खुद से पूछे कि क्या इसके बिना आपका काम रुक जाएगा, अगर नहीं तो आपकी चाहत है और वो आपकी ज़रूरत नहीं। तो जब आप ये समझने लग जाएंगे तो आपको है वो अपने जीवन में हर चीज़ की वैल्यू समझ में आएगी। और डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हर समय एक्टिव रहने के बजाय कुछ समय शांत बैठे, किताबें पढ़े, ध्यान करें। इससे आपको है वो डिजिटल डिटॉक्स करने से आपका मानसिक जो कह सकते हैं स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपकी वाणी, व्यवहार में विनम्रता, यानी कि ऊंचे विचार हमेशा आपकी भाषा में झलकते हैं। दूसरों से बात करते समय हमेशा सम्मान और शालीनता बनाए रखें, जिससे आपके व्यवहार में भी आपकी विनम्रता दिखेगी। और अपने अंदर, यानी कि जब आप अपने घर को सामान से भरने के बजाय जब ये सोचें कि मैं अपने दिमाग को अच्छे विचारों, नए स्किल्स और ज्ञान से भरूंगा, तो आपके अंदर जो भौतिक वस्तु है उसके प्रति है वो आकर्षण है वो धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी विचारधारा है, जैसे बाहरी सुख है वो अस्थायी होता है, यानी कि आप महंगी गाड़ी ले लो, गैजेट्स ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जब आप अंदर से खुश नहीं है तो इन बाहरी सुख का कोई भी मतलब नहीं है। और आंतरिक सुख की बात करते हैं तो जब आपके विचार ऊंचे होते हैं, आप समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो उससे मिलने वाला जो संतोष है, आनंद है, वो आपको जीवन भर आपके साथ में रहेगा। तो दोस्तों, सादा जीवन उच्च विचार सिर्फ एक कह सकते हैं कि वाक्य नहीं है, बल्कि इसके अंदर जीवन का पूरा सार छिपा हुआ है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस पंक्ति को अपना लेता है, इस वाक्य को अपना लेता है, उसका जीवन है वो एक साधारण तरीके से आनंदमय और सकारात्मक जीवन है वो जीता है, जो कि आज के समय में, आधुनिक समय में बहुत ही है वो कठिन कह सकते हैं कि एक चैलेंज है कि हम इसको जीना है वो थोड़ा कम रहता है। लेकिन जब ऐसे प्रयास करते हैं, छोटे छोटे कोशिश करते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में हैं वो ऐसे ही प्रयास करें जिससे कि हम अपने जीवन को इस सादे तरीके से जी सकें।

श्रोता हूँ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनवर से क्षितिज तरे और शिल्पा राव की आवाज में ये प्यारा सा गीत। श्रोता हूँ, अब हम चर्चा करेंगे मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण पारंपरिक धार्मिक शिक्षा प्रणाली में आधुनिक विषयों, आधुनिक शिक्षण विधियों और डिजिटल तकनीक को शामिल करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य मदरसा के छात्रों को केवल धार्मिक ज्ञान ही नहीं देना, बल्कि उसके साथ साथ आधुनिक दुनिया की चुनौतियों और रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है। अगर हम बात करते हैं कि आधुनिकीकरण के जो मुख्य स्तंभ हैं, कि जो कोर पिलर्स जो इसमें लिए गए हैं, उसमें आधुनिक विषयों का समावेश, डिजिटल और तकनीक शिक्षा, बुनियादी ढांचे में सुधार और शिक्षकों का प्रशिक्षण इसमें शामिल है। तो आधुनिक विषयों का समावेश से बात करते हैं तो पारंपरिक जो अरबी, फारसी और जो धार्मिक शिक्षा है उनकी, उसके साथ साथ उनको विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी अंग्रेजी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करना, ताकि वो अपने पारंपरिक विषयों के साथ साथ जो ये जो अपने भविष्य बनाना या जो भी है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो आज के आधुनिक विषय हैं उनको भी वो पढ़ सके। और डिजिटल और तकनीकी शिक्षा में उनको कंप्यूटर लैब की स्थापना, इंटरनेट की सुविधा और बुनियादी कोडिंग या आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस यानी कि AI से जुड़े हुए व्यवहारिक जो कौशल है वो सिखाना है। और मदरसों में ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट क्लास, फर्नीचर, आधुनिक लाइब्रेरी, बिजली पानी जैसे

की जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो उनको उपलब्ध करवाना है, और केवल जो पारंपरिक विषय हैं उनके बजाय आधुनिक विषयों के प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करना, ताकि वो बच्चों को वैज्ञानिक सोच के साथ पढ़ा सके। और आधुनिकरण के लाभ यानी कि क्या उनको बेनिफिट्स हैं जिसके लिए ये मदरसा शिक्षा का आधुनिकरण किया जा रहा है, तो इससे जो आधुनिक विषय कंप्यूटर के ज्ञान से जो छात्र है वो मुख्य धारा के करियर विकल्प जैसे सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, कॉर्पोरेट नौकरियां हैं उनसे जुड़ सकेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य यानी कि 2020 की जो NEP है उसके लक्ष्यों के अनुसार यह जो उपेक्षित अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं इनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करता है, और यह प्रक्रिया छात्रों में अंधविश्वास को दूर करके तार्किक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा भी देती है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है उसकी मान्यता यानी कि आधुनिकीकरण के माध्यम से मदरसे राज्य या केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ पाते हैं, जिससे कि छात्रों की डिग्रियों को आधिकारिक मान्यता भी मिलती है। तो श्रोताओं, जो आधुनिकीकरण जो किया जा रहा है इन मदरसों का, उसका यही उद्देश्य है कि ये जो पिछड़े या वंचित जो वर्ग है उनको जो हमारी जो मुख्य धारा में है उससे जोड़ना, उनको है वो अपनी पारंपरिक जो शिक्षा है उसके साथ साथ इन अन्य विषयों का भी ज्ञान देना, और उनको आधुनिक समय के साथ साथ है वो समावेश करने के लिए डिजिटल तकनीकी शिक्षा देकर उनको एक व्यवहारिक कौशल सिखाना इसका मुख्य उद्देश्य है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बधाई हो बधाई से ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे अनुशासन के महत्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अनुशासन मानव जीवन की सफलता, उन्नति और मानसिक शांति का मुख्य आधार है। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बनता है, अनु यानी कि पालन करना और शासन यानी नियम या सिद्धांत, यानी कि इसका सीधा सा अर्थ है नियमों के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करना, चाहे वह छात्र जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर। अनुशासन के बिना एक सभ्य समाज और उज्ज्वल भविष्य की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। और अनुशासन के बहुत से लाभ भी हैं, क्योंकि जब हम जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं तो हमारा बेहतर समय प्रबंधन, यानी कि अनुशासन व्यक्ति को समय की कीमत समझाता है, जैसे कि हर काम वह समय पर पूरा होता है। और आत्मनियंत्रण यानी कि हमारे विचारों, आदतों और व्यवहार पर नियंत्रण रखने में हमारी मदद करता है। और अनुशासित दिनचर्या का पालन करने से व्यक्ति अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेता है। और जब सभी कार्य पूरे नियोजित और व्यवस्थित ढंग से होते हैं तो अनावश्यक मानसिक तनाव नहीं होता है। और समय पर उठना, कसरत करना और संतुलित भोजन करना स्वास्थ्य को उत्तम है वो बनाए रखता है। तो श्रोताओं, जो अनुशासन है उसके भी बहुत से प्रकार है, यानी कि बाहरी अनुशासन, आत्म अनुशासन। यानी कि बाहरी अनुशासन की बात करते हैं तो यह अनुशासन है जो हमें समाज, शिक्षक, माता पिता, कानून के डर, नियम के माध्यम से मिलता है। यानी कि हमें लगता है कि हम जिस समाज में

रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ के कुछ कानून नियम होते हैं, उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। और आत्म अनुशासन की बात करते हैं, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, तो यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, जहाँ व्यक्ति बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी इच्छा से सही राह नियमों का चुनाव करता है, वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि आत्म अनुशासन, और वही व्यक्ति को है वो आगे ले जाता है। तो अनुशासन कोई बंधन नहीं होता है, बल्कि एक सुव्यवस्थित जीवन जीने को एक कह सकते हैं कि कला के समान है। बिना अनुशासन के मनुष्य का जीवन बिना पतवार की नाव जैसा होता है, जो कभी किनारे नहीं लग पाती है। और महान बनने और समाज में सम्मान पाने के लिए बचपन से ही बच्चों में अनुशासित जो आदतें हैं उनको है वो डालना आवश्यक है, क्योंकि जब अनुशासन है वो उसकी नींव जब बाल्यावस्था में आ जाती है, बचपन में आ जाती है, तो वो व्यक्ति है वो आगे जाता है। तो श्रोताओं, अनुशासन है वो एक प्रकृति है वो कि अगर हम उसके साथ को जोड़कर प्रकृति के साथ अगर हम अनुशासन को जोड़कर देखते हैं, तो प्रकृति एक दिन भी अगर अपना अनुशासन छोड़ दे तो पूरी सृष्टि में विनाश और असंतुलन फैल जाएगा। तो इसी तरह इंसान का जीवन भी बिना अनुशासन के बिखर जाता है। तो हम प्रकृति से भी अनुशासन की सीख ले सकते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा तो अपनी निश्चित समय पर उदय होते हैं और अस्त भी होते हैं, कभी अपनी समय सारणी नहीं बदलते, यानी कि जो उनका उदय होने का समय है वो निश्चित है, वो मतलब कुछ भी हो जाए दुनिया में, सूर्य है वो सुबह निकलेगा ही, चंद्रमा रात को आएगा ही, और उनका जो अस्त का समय है वो भी फिक्स है। ऋतु चक्र को देखते हैं, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी फिर बरसात, तो ये भी एक अपना जो क्रम है वो तय है प्रकृति में। और आप देखते हैं कई बार जीवों से हम देखते हैं तो हमेशा एक कतार में चींटियां चलती है, भविष्य के लिए अनुशासित होकर वो भोजन इकट्ठा करती है। तो हम अपने आसपास अपनी प्रकृति से भी है वो अनुशासन के महत्व को सीख सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अपने से जसविंदर नरूला की आवाज में ये प्यार सकी। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अपनी दोस्त अर्चना को दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवानी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है इस सभा के शेष कार्यक्रम की रूपरेखा।

श्रोताओं, रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8:45 का समय रहेगा समाचार संध्या का, 9 बजे आप सुन सकते हैं न्यूज़ @9, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

जयपुर अजमेर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 का समय रहेगा जिले की चिट्ठी का और 6:45 पर आप सुन सकते हैं राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

स्टूडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पर एक नजर। 6:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस कांड। 6:15 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 7 आप सुन सकते हैं फोन इन कार्यक्रम हमारे किसान भाइयों के लिए किसान वन। और 7:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत सैनाई वादन राग विराग उस्ताद बिस्मिल्ला खां।

0: 8:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। 9:30 पर आप सुन सकते हैं राजस्थानी लोक संगीत और 10 बजे का समय रहेगा शामी गजल का। और फिल्म संगीत का लुत्फ उठा सकते हैं आप रात्रि 8 बजे, 9:15 पर और 10:30 पर। तो श्रोताओं, ये थी हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम की रूपरेखा। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस कांड, एपिसोड नंबर 112।
1: One, one, two.

ओर दिखाई दे रही है। हेमंत ऋतु अगहन का सुहावना महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र योग तथा शुभ दिन सभी अनुकूल होकर जब एकत्र हुए तो स्वयं ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बनाकर मुनिवर नारद के हाथों से राजा जनक के पास भिजवाया। शुभ मुहूर्त आया देख राजा जनक की नगरी में मंगल वाद्यों की ध्वनि गूंज उठी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: निर्धन निर्बल थार आगे शीश झुकावे,
1: आगे शीश झुकावे।
0: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो थाने नित ध्यावे।

0: पवन पुत्र है राम दूत थर सारी दुनिया आवे थारा दर्शन करे चाव से महिमा थारी गावे
1: महिमा थारी गावे
0: ओ नैया मारी ओ नैया मारी पार लगाया सरसी लगाया सरसी लगाया सरसी हमें भगत की पीड़ मिटाया सरसी हमें भगत की

अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से देश भर में लागू होगा, ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के प्रवेश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देश भर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार

0: करनी 50,000 करोड़ रुपए की लागत से इनके सुधार का काम शुरू किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से सड़क हादसे के घायलों की मदद करने और उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाने को कहा।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं, और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद, पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार मिट्टी और उसके लिए जरूरी उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री आज हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने किसानों से मिट्टी में उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार अल नीनो प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के मद्देनजर बचाव के तरीकों पर विचार कर रही है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है, और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अल नीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG रामजी देश भर में कल से लागू होने जा रहा है। ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समावेशी और मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। VBG रामजी पर पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
3: VBG रामजी मनरेगा का स्थान लेगा। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन से बढ़ाकर अब एक साल में 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। पहले श्रमिकों को 15 दिन में भुगतान किया जाता था, अब इसमें साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। ये राशि DBT के माध्यम से दी जाएगी। वहीं निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का वैधानिक प्रावधान रहेगा। कृषि मौसम में बुआई और कटाई के लिए मजदूरों की कमी नहीं हो, इसके लिए 60 दिन की राहत दी गई है। ये योजना ग्रामीण आय में बढ़ोतरी और आजीविका सुरक्षा को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
0: VBG रामजी अधिनियम 2025 की प्रावधानों के अनुसार कल से काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो गए। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं और व्यावसायिकता को कायम रखते हुए ऊंचाइयां छुएगी। सेना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य बलों को उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से शक्ति मिलती है।
4: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: सेना की दक्षिण पश्चिम कमान सप्त शक्ति के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह भी आज सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने जयपुर सैन्य स्टेशन के प्रेरणा स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि लगभग 4 दशकों की सैन्य सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर और पश्चिमी सीमा पर कई अहम और चुनौतीपूर्ण कमान और स्टाफ जिम्मेदारियां निभाई। इसके अलावा उन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर की जिम्मेदारी भी कामयाबी के साथ पूरी की। नई दिल्ली में कल हुए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर आगमन पर आज उनका शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस समझौते से प्रदेश में जल सुरक्षा और समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शेखावाटी क्षेत्र के लाखों परिवारों के जीवन में ये समझौता खुशहाली का नया अध्याय लिखेगा, साथ ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बनेगा। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है।
5: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है, हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें यह विचार भी करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है, विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और मेरे भाइयों, उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है। सामाजिक सरोकार के कार्य हो, सार्वजनिक कार्य हो, उनको बताना है और बताना ही नहीं, उनको करवाना है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा और मरम्मत कार्यों को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्थिति में जर्जर और असुरक्षित भवनों का उपयोग नहीं किया जाए। श्री यादव ने सभी स्कूल भवनों की गहनता से जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 2000 से ज्यादा विद्यालयों से संबंधित विकास और निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं चालू वित्त वर्ष में करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण और विकास के काम करवाए जाएंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नेस्कॉम और MNIT जयपुर इसके नॉलेज पार्टनर है। सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नवाचारों और डिजिटल सेवाओं को साझा करने में ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा।
6: राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
7: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 से 4 जुलाई के बीच राजस्थान में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल कई स्थानों पर भीषण गर्मी और उमस का असर है। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और फलौदी में भी दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। उधर बाड़मेर में आज धूल भरी आंधी चली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से देश भर में लागू होगा। ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी। और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मानसून के प्रवेश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। जिले में जून माह के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, कृषि और जनकल्याण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। प्रशासनिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा और क्रियान्वयन जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योग अभ्यास के आयोजन हुए। मुख्य समारोह मचकुंड रोड स्थित परशुराम धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। योग अभ्यास का संचालन पतंजलि योग पीठ से जुड़े योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर योग के महत्व और नियमित योग अभ्यास के लाभों की जानकारी दी गई। जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालय परिसरों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष योग दिवस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। धौलपुर जिले से गुजरने वाले आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। जिला प्रशासन, NHAI और निर्माण कंपनी के बीच सहमति बनने के बाद किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। इससे परियोजना का रास्ता साफ हो गया है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले भर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 2 लाख से अधिक बच्चों को अभियान के तहत शामिल किया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष बूथ लगाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ी हैं। विभिन्न वन क्षेत्रों से बाघों का मूवमेंट लगातार दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में एक मादा बाघ ने वन क्षेत्र में गश्त कर रहे एक वनकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। वन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हॉकी मैत्री मैच आयोजित किया गया। मैच का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना और खेलों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना था। खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया। री नीट परीक्षा जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 2000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी के विशेष प्रबंध किए गए। प्रशासन और परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी की। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस सप्ताह के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रैलियां, शपथ कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने आमजन से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत पहले चरण के दौरान मकान सूचीकरण और आवास गणना काम में धौलपुर जिले ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। जिला प्रशासन ने इसे टीम वर्क और बेहतर समन्वय का परिणाम बताया। जिले की युवा क्रिकेट खिलाड़ी रजत बघेल का भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। विकेट कीपर के रूप में उनका चयन होने पर जिले में खुशी का माहौल है। भारतीय टीम इन दिनों श्रीलंका दौरे पर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत सरकारी और निजी संस्थानों में पौधे लगाए गए। विभिन्न सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने इसमें भागीदारी की। जिले में मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से ताजिए निकाले गए और निर्धारित मार्गों से होते हुए कर्बला तक पहुंचाए गए। तीजा जुलूस के दौरान युवाओं ने पारंपरिक कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। वहीं जिला मुख्यालय पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़कां माथे हिफाजत ने बधावन सारू कहो। सड़क हादसा में जख्मी लोगों की मदद करण अरवाना टेमसर अस्पताल पुगावन री अपील कीनी। वीबीजी रामजी कानून 2025 कालू देश भर में लागू भेजा वेला। मनरेगा री ठोड़ लेवेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा ओहदारो कामकाज संभालियो। राज्य री सगली सरकारी स्कूलां रा भवना री हिफाजत रा लिहाज गहरी जांच करी जावेला। और प्रदेश में आवता 2-3 दिन में चौमासा री बिरखा शुरू होवन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे समाचार विगतवार। देश में हादसा वेवन और जमीन धस जावन री शंका वाली सड़कां री पिछाण करी ची है। केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपया खर्चों आरा सुधार रो काम शुरू कीनो है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में सड़का माथे हिफाजत रे बारे में राखी जाए कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। गडकरी कहो के उचित निशान लेन मार्किंग और अंडरपास बनावन सागे अंतरराष्ट्रीय मानकान मुजब सड़क इंजीनियरिंग काम लेवन री कोशिश करी जा रही है। श्री गडकरी सड़का माथे हिफाजत ने बढ़ावो देवन में जनता री भागीदारी बढ़ावन और मोटर गाड़ियां चलावन वालाओं यातायात नियमों री पालना करण री अरज कीनी। वह लोगों सड़क हादसा में जख्मी वेवन वाला री मदद करण अरवाने सही भगत बना अस्पताल पुगावन री अरज कीनी।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
3: सरकार मिट्टी और वहां सारू जरूरी खाद री मात्रा री जानकारी देवन बाबत मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा रा हिसार माए खेत बचाओ अभियान रा समापन समारोह माए आ जानकारी दीनी। वह किसानों मिट्टी री उत्पादकता बनाई रखन सारू खाद और कीड़ा मारन री दवाइयां जरूरत रा आधार काम लेवन री अरज कीनी। कृषि मंत्री कहो के सरकार अल नीनो रा असर कम बिरखा भेवन री शंका न ध्यान रखता थका जरूरी इंतजाम कर रही है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
3: देश में काल 1 जुलाई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी लागू है जावेला। देश का गांवई हलका माए माली व्यवस्था ने समावेशी और मजबूत बनावन सारू मील रो पत्थर साबित फैला। वीबीजी रामजी रे बारा माए पेश है न्यूज डेस्क सालेहा गाजी री रिपोर्ट।
0: वी बी जी राम जी मनरेगा री ठोड़ लेवेला ईरा तहत गावाई हल्का माए लोगा ने 100 री बजाय 125 दिन रा काम री गारंटी मिलेला। वी बी जी राम जी रा तहत मजूरा ने हर हफ्ता मजीरू रो चुकारो सीधो खाता माए करियो जावेला। तय मियाद माए काम मुहैया नी करावन री सूरत माए बेरोजगारी भत्ता मजूरी रा चुकारा माए मोड़ो वेवन परा क्षतिपूर्ति रो वैधानिक प्रावधान करियो जावे है। खेती बाड़ी री रुत माए बुआई कटाई सारू मजूरा री कमी रोकन सारू 60 दिन री राहत दिरी जी है। वीबी जी राम जी गावाई हल्का माए आमदनी बढ़ावन और काम धंधा री हिफाजत मजबूत बनावन री दिशा माए खास जतन है।
3: वीबी जी राम जी 2025 रा प्रावधान रा मुजब कालू काम रो बगत समारे 9 से 5 बजे ताई रहवेला। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेना प्रमुख रहता हूँ रिटायर वे क्या ये मौके वे कहो के फौज ने फौजियां कमांडरां पहली वाला फौजियां मारा परिवारां हर देश री जनता रा अटूट भरोसा ताकत मिले है। जनरल द्विवेदी कहो के भारतीय सेना लाडला 2 साल माए हर मोर्चा माथे तुरंत काम करन रा बूता संतुलन हर सावचेती लगातार बनाई राखी।
4: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों कमांडरों पूर्व सैनिकों परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं।
3: जनरल द्विवेदी नुआ सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने जिम्मेदारी सौंपता था। जनरल सेठ री अगुवाई में भारतीय सेना री माथो ऊंचो करण वाली परंपरावां बनाई रखता था। व्यावसायिकता और पक्का इरादाओं नई ऊंचाइयां हासिल करन रो भरोसो जतायो। सेना री दक्षिण पश्चिम कमान रा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ही आज रिटायर फेंक्या। ये मौके वे जयपुर सैन्य स्टेशन रा प्रेरणा स्थल माथे शहीदा ने श्रद्धा भाव सागर याद कीना। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो के करीब 40 साल री सेवा रे दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जम्मू कश्मीर और आतुनी सरहद में थके खास कमान और स्टाफ री जिम्मेदारियां निभाई। वह इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर री जिम्मेदारी कामयाबी सागे पूरी कीनी। नई दिल्ली में काल भया ऐतिहासिक यमुना जल समझौता पाछे जयपुर आवन पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो शहर में न्यारी न्यारी ठोड़ा स्वागत करीचियो। मुख्यमंत्री राज्य में जल सुरक्षा और पूरा विकास माथे पड़वा वाला सकारात्मक असर रे बारे में विचार बताया। वो कहो के वो करार विकसित राजस्थान री मजबूत नींव बनेला। श्री शर्मा कहो के सरकार जनताओं करीचे हर वायदा न पूरो करन री कोशिश कर रही है।
5: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है। हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए तो हमें यह विचार भी करना चाहिए क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है। विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है और मेरे भाइयों उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है। सामाजिक सरोकार के कार्य हो सार्वजनिक कार्य हो उनको बताना है और बताना ही नहीं उनको करवाना है।
3: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। राज्य री सरकारी स्कूलां सारू किनी हालात माए हर जर्जर और असुरक्षित भवन काम नी लेवन रा हुकम दिया चिया है। स्कूल भवना री हिफाजत और मरम्मत रा कामा रो जायजो लेवन सारू आज जयपुर माए राखी जी मीटिंग माए प्रारंभिक शिक्षा विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव आ जानकारी दीनी। यादव सगली स्कूलां रा भवन री गहराई उ जांच करावन रा हुकम दीना। वे बतायो कि लारला माली साल माए 2032 स्कूलों जुड़िया विकास और बनाई चुनाई रा काम करी जिया जबकि चालू माली साल माए करीब 550 करोड़ रुपया रा खर्च वाला काम कराया जावेला। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन काल जयपुर में शुरू भेला। विकसित भारत 2047 AI enabled data driven and secure digital governance मुद्दा माथा विवरण वाला ई सम्मेलन रो उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेला। ई मौके NCEG प्रदर्शनी लगाई जावेला और राज्य सरकार

0: रा न्यारा न्यारा नुआ कामारी शुरुआत फैला। सम्मेलन रा दूजा दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया जावेला। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रोई इन कार्यक्रम में शिरकत करण रो कार्यक्रम है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत के दौरान आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सरकारी सेवा बेहतर तरीकों पुगावन नुआ कामा और डिजिटल सेवा मारी पहुंच जनता ताई बधावन माए ओ सम्मेलन खास साबित फैला।
1: राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: सम्मेलन रबारा में और ब्यूरो माना खबर नवीसों।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: मौसम प्रदेश में आवता 3-4 दिन में चौमासा री बिरखा स्वरूप एवं रात चोखा हालात बनी उड़ा है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र 2-4 जुलाई बीच राज्य में चौमासारी बिरखा स्वरूप एवं आसार जताया है। इस दौरान प्रदेश रा लंकाऊ और लंकाऊ उगनी हिलका माए आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी री संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग माए कठे कठे भारी बरसात रा आसार है। फिलहाल कई थोड़ा जबरदस्त गर्मी और उमस रो असर बनी उड़ो है। लाडला 24 घंटा माए श्री गंगानगर माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस न पार कर गयो। बाड़मेर माए आज आंधी चाली। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़का माथा हिफाजत ने बधावन सारू कहो। सड़क हादसा माए जख्मी लोगों ने मदद करण अरवाना टीम सर अस्पताल को गावन री अपील कीनी। VBG रामजी कानून 2025 काल देश भर माए लागू है जावेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा होदारो कामकाज संभालियो। राज्य री सगली सरकारी स्कूलां रा भवनारी हिफाजत रा लिहाज गहरी जांच करी जावेला। और प्रदेश में आवता 2-3 दिन में चौमासारी बिरखा स्वरूप वन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवेरे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 7 बजे है, आइए सुनते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।
4: भारत सरकार

0: ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਗਲਾ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਭਾਈਦਾਰ
1: ਪੂਜਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਘਣਾ ਘਣਾ ਰਾਮ ਰਾਮ
0: ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੇਖੋ ਪੂਜਾ ਬਹਿਣ ਕੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ तो गर्मी तो पड़ी पड़ी और खेत में लोग बुआई भी चालू कर रहा है, साथ ही साथ में आंधी भी चल रही
1: जी बिल्कुल।
0: तो थोड़ो सीखी है कि आंधी रे महीना जो कभी बुआई करी है और थोड़ो वो ना चिंता तो रही है क्योंकि आपो रेत की है कि जो मिट्टी है नी बलुई मिट्टी ज्यादा है तो जो ही आंधी चालू हुई तो जो ही कोई बेपोकड़े पोखड़े निकलोड़े हुई तो मेरे कन्ने हो की है कि पौधे रे कन्ने से धूल उड़नी चालू हो जावे, मिट्टी उड़नी चालू जावे और पौधो गिर जावे। तो ये समय में ना देखो जो कर खेतों और चारों तरफ बाड़ा बंदी भी करोड़ी है, जो आपो के सो कोई पेड़ उगाड़ा है या वो अरे चारों तरफ अपर एथरी जो कोई प्रकृति मेड रे मिना प्रकृति रा जो कोई पेड़ पौधा लागुड़ा है उमर तो भाई खेतों में बचाव हुई है। तो ये वास्ते सबसे मोटी चीज है कीजिए कि आज समय रे मिनो अपोरी जो परंपरागत वनस्पति है वो अपर खेतों रे आसोड़े पासोड़े होनी चाहिए ताकि की है कि अपोरी जो प्रकृति है देखो के हवाओं तो अपर तो बहुत ज्यादा चले, गर्मी बहुत ज्यादा पड़े और गर्मी पड़े जद की है मिट्टी की नमी तो निकल जावे, मिट्टी हो जावे एकदम सूखी और पछे हवा रे साथ में उड़नी चालू हो जावे तो पछे खेतर में ना मिट्टी जो अपरदन तो हुई जाए। तो ये समय रे में ना सब सुजतो हो सके और हमें यहाँ पर जो को भी जो बरसात रो बखत आ रही है तो घना सी तो भाई और खेत बीजे में लागू रहा है पेड़ पौधा भी, फिर भी कोई एड़ा कुछ लोग है तो उन्होंने हो सके जितो आप खेतों रहे जो को ओतरो पासो और दाखनो पासो है ये में तो विशेष कर पेड़ लगाओ क्योंकि आप मोटा मोटी देखो तो बे पासे सो हवाओं चले गर्मियों में चले दाखनी सर्दियों में चले ओतरी तो उत्तर सो ठंडी हवा हुई और गर्मियों में जो दखनी चले वो ना गर्म हवा तो दो ही भी जिकी टाइम आप रे कहनी के प्रचंड रूप में वजह दे झाड़खों बाढ़ दे दबो पड़ जावे, कई बार देखो तो सर्दी से तो पूरा पूरा लू सी जावे पड़ा पौधा है फसल है या आसोड़े पासोड़े जितना भी पेड़ पौधा है वो सब जल जावे और गर्मियों से भी जल जावे। तो ये दरमियान अपरा जो है प्रकृति के अनुकूल पौधा आप लगा हो तो वो आंधी बीजी शेंगों ने झालन में सक्षम है। तो ये वास्ते जो को भी भाई सुन रहा है ये वक्त भी है और ये वक्त इतुज लाभ लेना है कि हो सके जो अपने प्रकृति के अनुकूल आप खेती प्रकृति के अनुकूल आप जो वनस्पति है वो पौधारोपण होना चाहिए ताकि आप प्रकृति से लड़ सके जो आप भी लड़ सको क्योंकि देखो बाहर लो आदमी कोई आवे तो आंधी गर्मी देखे तो वो तो विचलित हो जावे। तो ये वास्ते अपो जो कौकर प्रकृति रो करे वो हिसाब से अपर थी वनस्पति भी है तो जितो भी खेत रो अगर सुधार करो तो ठीक है खेत रो सुधार होना चाहिए लेकिन ओथरी जो को मूल वनस्पति है वो पूरा समूल नष्ट नहीं होना चाहिए पूरा भी क्योंकि खेत रो आगे से आगे बस
1: सही बात है। और जो थे बात करें कि हाँ आप वनस्पति लगाना चाहिए तो आप किसान बहरे वास्ते खेत में आना कॉम करना से कम है लेकिन यह समय में वो आपके खेत की मिट्टी की पौने की जाँच करवा सके क्योंकि यह समय निरंतर समय है और ये टाइम आपको खेतों में कोई कॉम कौन करना खाली पड़िया के तो किसान बहरे वास्ते उचित समय है जब वो आपके खेत की मिट्टी की और पौने की भली तरह से जाँच करवा लें ताकि आगामी फसल के वास्ते पूर्ण रूप से तैयार रहे आपको खेत में कई फसल उगानी है कई प्रकार का बीज लेना है ये सब बातों से तैयार रहे कितनी खाद की आवश्यकता है और जब वो बीजारोपण करें तो आपको कहना है कि सबसे पहले बीजोपचार जरूर करें।
0: देखो पूजा बहन बात तो थोड़ी सही है मैं देखो के जो कॉपर एथ की है के देखो तो मोटा मोटी रूप से तीन तरीके रो खेत रो बुआई रो हमें चालू हुई क्यों पहले तो आप बरानी जो होती थी बरसात आता है तो इस अपर खेती उसे हमें तो नहर सु हो गई है तो नहर सु जो को भी भाइयों है वो घड़ा सीखो तो आपरी बुआई चालू कर दी जब मूंगफली री बीजे री आपरी जे थी उमर बढ़िया खेत था जगह सर था तो वो आपरी कर भी दी वो कर दी। और बीजे में जो कर बेरा है ट्यूबवेल है या सरकारी जो कोई योजना है पौंड योजनाओं बीजे के अनुसार और आप पौड़ी जो संग्रह करना ट्यूब बनाया है तो वो भी आप रोक खेतर के काम चालू कर लियो। हाँ जो कोई ब्रानी है वो भी आप बहुत मोटो लंबो चुड़ी है देखो तो खेतर भले जगह ब्रानी खेती भी तो उम्र वास्ते ऐ समय जो को हाँ बात करी कि भाई हल तक भी मिट्टी पानी जांच रो भी हो सके बीजोपचार हो सके ये तैयारी कर रखे क्योंकि बरसात जो ही बरसात हुए तो अपन पहले आप अपने बने आप ट्रैक्टर है बीजा है शेंग और तैयारी उड़ी रहे तो बीज बीज हुए तो वो भी लियोड़ हुए तो बढ़िया तो कौन सा लेना है कौकर लेना है की लेना है बिल लेना है उसके साथ कट्टो देखना है कट्टे की तारीख देखनी है क्यों कई बार क्या करें कि पूरी म्याद खत्म हो रही लेकिन आप क्या करें कि पूरी एक्सपायरी डेट तो म्याद खत्म हो रही तो वो पे आप खाथौन में ले आऊँ पीछे बीज उगाऊ बीज रे महीने थोड़ी सी नमी भी क्या करें कि रेवनी चुजिए एक अपारा जो कहे कृषि परिवेशक जो को सरकारी प्रतिनिधि लगोड़ा है अपना वैज्ञानिक लगोड़ा है वो सब पर जो चर्चा हुई तो वो कदी कदी क्या करे तो चूंकि हमें आप कोई पुराना अपन दे दे किट तो काल अपने खेत में काम नहीं करे आप।

0: ईसाई बंगो, तो ई वास्ते जोको भी भाई सुन रहा है, जोको भाई कर दिए वो ठीक है, नहीं करिए तो पूजा बंधाओं बतायो जोको आप तैयारी करे,
1: जी बिल्कुल
0: बीज उपचार करे, बीज खरीदी टाइम किटरो ध्यान रखे, किट संभाल रखे, किट माते तारीख देखे, बीजे में बिल पक्को ले, बिल लड़े दुकान है जो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, मतलब पंजीकृत है कि नहीं, क्यों कई बार एडे दुकानों में सड़क माथे कोल बैठा है, बीज बढ़िया लेकिन आप पैसा भी दे दो, बीज में कई बार है क्या पर जो किसान भाई है उनके पैसा थोड़ा कम हुई तो वो बच की उधार चक्कर में जाए बीज ले ले, तो ये वास्ते खेत रो फसल है वो माथे से दारू मदार है, तो ये वास्ते फसल लेते टाइम अपन थोड़ा सी ध्यान रखना है, पंजीकृत दुकान में और छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखते हुए अपन काम करना है, तो जो को बुआई कर लिए वो ठीक है, नहीं कर लिए तो पूजा बहन बताए हो जाऊंगी बात, और थोड़ा ध्यान रख, बीज उपचार है, बीज खरीदनो है, मिट्टी पानी की जांच है, या ये टाइम में भी जो को भी थोड़ा सी गहरा कोई गड्ढा भी कर रखना है, क्योंकि आजकल तो गर्मी बड़ी बड़ी, तो कोई अगर आप बागवानी की तैयारी कर रहे हो या चारों पास पौधा लगाना है तो ये वास्ते हड़ो समय वो अगर उपयुक्त समय है।
1: बात तो आप जारी रखो, लेकिन वो समय समय में आप किसान बहरे वास्ते जानकारी लिया जाए तो पहले समझे भेंट वार्ता।
2: अब तो कितने गए थे उनके सॉन्ग
0: 200
2: 200 है। अच्छा 200 रुपया रखे आज ये परिस्थिति में कौन करते उम्र पालन पोषण करो मैं जो है ना रहते हैं
3: हड़ार व्यक्त के अनुसार तो जाली तार मो हैंग अतिक्रमण ने ऐसा मो दिनों दिन जमीन कम रहती चारा का तो रेज को नहीं
2: बिल्कुल
3: चारा का नहीं रहने कारण तो मानो परिस्थिति असमझोते आलू है आज ये था तो कादर दिन बड़े कीत बरहाल घरे कटियो तो ही आलू कीत काटनो तो गर्मी नाम बड़े आउट ऑफ स्टेट बीजे राज्यों में जाना पड़े परिस्थिति असमझो तो कर बेहनो पड़े की करे मजबूरी है चराने भी मुश्किल पाछो हर तरह देख रेख हम मुश्किल
2: तो व्यवस्था करो मतलब બીજો રાજ્ય થોડું કઈ દેવા શું
3: બીજો રાજ્ય માં ભલે ગુજરાત જાઓ એમપી જાઓ હરિયાણા જાઓ મેં લગભગ હરિયાણા જ જવાનું અહીંયા સાલ
2: અચ્છા હરિયાણા માં કોઈ વ્યવસ્થા ઠીક રહે
3: વ્યવસ્થા તો ખુદ રે સ્તર માં છે
2: મતલબ પછી ઉતરનો કી એક
3: ઉતરનો ધાણો કી એક કે નહીં ફસલ કટાઈ એ કટાઈ ઘેવું રૂચણો ઓર સરસો તીનારી ફસલ બુવાઈ વે લગભગ જો કો અહીંયા રેણા કટાઈ હે ને એક વાર જણો ઓને એક વાર એક મહિનો દન ઉતરનો તો ધાન ઇસ મળે લગભગ
2: ઠીક હે
3: આર પછે તો ચારે રી ભૂખ હે કોની બખર નીકળે નો
2: ના કો દે
3: ના ના કોઈ કો દે ના કો દે તો બિઠાણ હારી કોઈ તો હમ પ્રો મનો ખુદ નો નિમંત્રણ કરે કે આજ માર કે તો બેઠા તો મ થનો ત્રો આટો દે હંચા કોણ દે હો ઉ એ સમય હોય અન કદી પરિસ્થિતિ લેટ હોય તો કોઈ નહી હોય તો ખુદ રે સ્તર માથે રેણો પડે
2: અચ્છા મહિનો દિન તો એ ધાન જરે પછે
3: પછે ચારે ભૂખ હે કો
2: ચાર ગણી પહાડી છૂટ ગણી
3: જો છૂટ ગણી ખુલ્લા કે પછે તો પાછો કપાસ બે ઉય એરી માં કપાસ બે બાકી કપાસ નહી બે ઉય એરી માં હુકો ચારે ભૂખ હે કોન સમય નીકળે બો
2: અન બીજો ચોરી ચકારી બીજી કાઈ
3: બાકી ચોરી ચકારી હે ઉ હે કે દન ચોરી હે કોન રાત્રો કોઈ પાર્ટે બાર લે ઓ તો રહ્યો ચોર હે કોન બાર લે પાર્ટે કોઈ માથે પડે તો ઓ ચોરી હે સાવધાની રાખણી પડે રાત ભર પેરો દેડો પડે હર તરહ परेशानी है जो है हमें महंगाड़ो जमानो महंगाड़े जमाने में दिनो दिन डीजल महंगो हुए जो हमारे किराया महंगा पड़े
2: किराया मगर गाड़ी
3: किराया गाड़ी और किराया ये तो बिजन पैदल तो ले जाना काबू
2: अच्छा पैदल क्यों को ले जाए
3: पैदल यहां को ले जाए कि हम हर जगह चारा का है कोनी रोडो में तो व्हीकल बैठ दे कोनी
2: सही बात
3: ले जाओ की ये कारण एक लंबी भाव में ये तो कम हो कम में हरियाणा में जाते 800 900 किलोमीटर हुए
2: बरोबर
3: 900 किलोमीटर पैदल थोड़ी जाले
2: जाते
3: पहले आज में सॉल्व
2: अच्छा बीजो जीव जनावर
3: बाकी जीव जनावर को जीव जनावर
2: हमें जो अपे एक भेड़ा पाल लिया थे 200 भेड़ा पाले तो 200 माथे कितनी इनकम आवे कितो खर्चो और खर्चो की किया हुए
3: हमें ये है कि सही चीज तो हर भले कोई उद्योग करो वो तीन इस पहलू है पहलो उत्पाद बीजो वो देख रेख मैनेजमेंट और तीजो वो मार्केटिंग
2: ठीक है
3: सही चीज तीन पहलू से
2: जी
3: हमें वो उत्पाद आ रहे तो आप नस्ल की कोशिश करो और भेंडा लेनी ऊन आलो वे मांस आलो वे दूधारू वे हरीर आलो वे ये सब चयन कर कर उत्पाद रे तोर माथे बेहतर हम जहाँ पे
2: बरबर
3: पछे तो देख रेख है तो मौसम अनुसार सर्दी और मौसम है नवंबर दिसंबर में तो पीपीआर टीका लगाओ तो भेड़ माता का टीका लगाओ हर तरह टाइम टाइम माथे आयुर्वेदिक वे जुआ चिंचड़ गडू ईर हारो वे तो ईर टाइम टाइम हो जो पेड़ शिकायत देखे तो ऊन खोहनी शुरू हुए भी चिंचड़ हुए तो उगना जो को हमें ये आयुर्वेदिक में ये गडेरा 2 ml देनो पड़े जो को उगे में की है के टाइम टू टाइम देता जावे
2: हमें उगे अपने जो अंतरजीवी है परजीवी है परजीवी रे बगा अपन कई के टाइम ये टीको लगाना पड़े
3: परजीवी रे लिए जो है कोई शिकायत हो तो लगावे
2: अच्छा अब धड़ीठा पड़े
3: तो धड़ीठा हैंग पड़े
2: जे शिकायत हुए तो
3: शिकायत हुए तुरंत लगाओ
2: अच्छा तुरंत लगाते वो मर जावे
3: हां वे यहां के 2-3 दिन रो पीरियड हुए तो टाइम वो अपने आप नष्ट हो जाए
2: नष्ट हो जाए
3: और ए जो आयुर्वेदिक टीका है ना एक वो लोकल कंपनी आवे वो जो तो कम ही जो वे वो डोज रहा
2: हां प्रभावी कम
3: डोज वे प्रभावी कम हुए जो को उवे मा तो कम असर है बाकी जो को ओरिजिनल कंपनी और जो को है नी टीका वो टीके मौत की ये आंतरिक और बाहरी
2: परजीवी
3: अंतरजीवी और परजीवी दो ही है ना प्रकार रहा वो दो में एक काम करे
2: अच्छा या महीनो पेट में न जत
3: कमी आवे मोरू और बाकी पेट में कीड़ा लिए तो हर 4 महीने डोजिंग करनी पड़े कीटनाशक दवाई पिलाणी पड़े वो हर 4 महीने बाद
2: बिल्कुल
3: वो डोजिंग करनी पड़े वो 4-4 महीने वो डोजिंग करतो जावे तो सर ये बरसात मौसम में तो एड़ी दवाई दे जो हरे चारे में काम करे सर्दियों में हुए जो गर्म दवाई हुए
2: बिल्कुल
3: तो वो गर्म दवाई दे तो उगे मां हेफड़ो भी जो खांसी कलको भी जो वे कोनी
2: अच्छा
3: और बाकी गर्मिया मां दो जो को दवाई रात में ऐसा मौसम रे ऐसा मत ले
2: न जो है तो हैना तो कोई रोग रंज बे ना
3: ना रोग रंज ना कहीं को
2: और ये मौसम में तो वही कुन कहीं
3: वही कुन
2: वही कुन हम आन आल जो गर्मी है उगर में
3: हम आन आल गर्मी मां तो मन में ये था मैं भेड़ो कतरा ने भेड़ो कतरा इन पछे मनो जे बार जिले में जा बार राज्य में जाओ ने चण उई जगह क्लाइमेट जलवायु रे हिसाब हम मनो उई जगह टीको देनो पड़े
2: सिर्फ अच्छा पेल
3: टीको देनो पड़े दवाई पेल को देनो पड़े और उतर ते उए बीजे दिन मन टीको देनो पड़े
2: जी
3: टीको दे इन पछे 7 दिन देर करे
2: अच्छा
3: 7 दिन रो टाइम हो टीके रो 7 दिन पछे उने पाछी दवाई देनी पड़े डोजिंग
2: अच्छा
3: वो डोजिंग दवाई दे तो ये सर्दी हणा हाथ कम है और वो सर्दी ज्यादा आवसी
2: अच्छा
3: ना एक को तो गर्म दवाई देनी पड़े ये जाइक्लोज है जेनवेट है एड़ी दवाई देनी पड़े
2: अच्छा
3: और वो पछे महीने 1.5 महीने पछे जो चरण धोए तो उठी के ने पछे भी दवाई दी
2: खुदी अनुभव बहुत ज्यादा बता एक मतलब एक जो वेटरनरी डॉक्टर बता जो जो थे बता रहे तो थाने की मतलब अनुभव कितना साल हुआ थाने
3: पेड़ जो विरासत में मिली हुई है
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: को मां खुद खरीदड़े है को नहीं ये जो तो भेड़ पालक है ना भेड़ पालक वो पशु पालक ये आधो अनुभव डॉक्टर आधो अनुभव पशु पालक उठी गए
2: पर जी ये तो खैर हो गए जो रासायनिक दवाई हुए मतलब जो पर कई चीजों एड़े वे कभी दवाई नहीं पूछ सका एंड टाइम कोई पशु बीमार पड़े जो हम कोई एड़ी चीज हुए तो अपन गुडे देसी वक्त में आप जो कोई कई रोग एड़ो वे जिके ना अपनी देसी वक्त कर सको
3: देसी औखद हाँ तो बरहाल वो आफ रेम होए ना बेकार भी जो एड़ो ज्यादा मात्रा में होए जद वो तो पचे कोने वो आफन शिकायत हुए भी तो उए मो पछे आ कम दूध करो या तेल
2: आ कम दूध कोकर पावे
3: आ कम दूध कई कोने दूध तो दो ये ये मो बेली राखनी पड़े बोतल छोटी
2: हां
3: उए मो दूध पो दो ये बकरियो और उए मो आ कर एक दो टीबा नोखे
2: जी
3: और तुरंत ही उए ना
2: पाइदो
3: पाइदो तो ओ
2: आफ्रो करे
3: आफ्रो ब्रेक को ग्राम बाण समझो
2: और बीजो कई बार है जो महाड़ खुराड़ हुए
3: महाड़ खुराड़ नवंबर दिसंबर में टीका लगाओ
2: बस
3: महाड़ खुराड़ रो पीपीआर रो भेड़ माता रो ए ये नवंबर दिसंबर में टीका लगाओ
2: अच्छा अगर जो एक रोग हुए तो पछे टिक्की करो क्योंकि उतना भेड़ में धंधा हुए रोग है ना
3: ओ या उगनो की करे के जे भेड़ मा 5-7-10 भेड़ झल्योड़ी हुए झल्योड़ी वे उन अलग करो
2: अच्छा अलग बाड़ो
3: रखो समझा और उगे पर पछे उगे अलग राखो तो उगे तो दवाई जो को दर्द निवारक है ओड़े चलसी नागली पूरिया टीका टीका दियो हाथ नंबर टाइम हो हाथ नंबर टाइम में जो भेड़ जली वो जलसी हाथ दिन पक्ष आप टीको असर करो शुरू कर सी पक्ष नयो जीवाण को जल
2: बीजेर में कितना बार खूटो साल में
3: दो बार
2: कितु कितु ऊन आवे
3: हमें ऊन आलो तो घाटे रोज हो दो है सही चीज ऊन रो मार्केट है को नहीं हमें जेहन मेर बाड़ मेर बने भेड़ बाहुली क्षेत्र ऑनलाइन आते ये जगह ऊन रो कोई धनी को नहीं
2: बस केत बेचो
3: हमें तो सही चीज एक बेचन में तो मजबूरी में मंदे नहीं पड़े की करे
2: रखे
3: बरहाल भेड़ वे ऊन वे आधो पूनो किलो 10-15 रुपये ऊन वे 20 रुपया कतराई
2: बरोबर
3: खान खर्चो अलग हमें वो ना मार्केट तक पुगाड़ो खर्चो अलग वो भी आगे के कारे के एड़ी मजबूरी हुए के माल सामान लियो तो मैं उन लियो नहीं लियो को लियो। क्यों मंडी है को नहीं
2: सही बात
3: और एक दो लेना आला है वो तो आप मन मोनी रह सब वो तो आप मां 60 गांठ है के ये भाव ज्यादा तू मत ले ये ज्यादा तू मत ले करना लिखोड़ी थार मन मरसी मन मारे लिखोड़ी मन मरसी चढ़ो मन मोनी चलते ये उम्र में तो घाटो है ऊन भी घाटो है तो तारे मैं कहें मैं तो मार्केटिंग होना भी जरूरी है
2: बिल्कुल
3: तो ऊन री मार्केटिंग को नहीं तो मौसरी भी नजदीकी कोई मंडी है को
2: अच्छा पसे के जावे गेटा भी
3: हमें गेटा जावे तो एक जावे दिल्ली जाओ अमृतसर जाओ हैदराबाद जाओ अहमदाबाद हो रहा तो कोई मंडी है इसको
2: खुद ले जाओ का कोई
3: ना मैं खुद को ले जाओ ने व्यापार के माध्यम है जावे
2: अच्छा एक बात बताओ भलो या पांच जो गेटो है की बाप के कितो महीनो बिकन शुरू हो जाओ
3: बिकनो तो शुरू 3 महीना हो गए
2: अच्छा
3: हमें वो ए तो चीज है पालन पोषण माथे
2: अच्छा
3: के जमाने री वे मेहरवानी जद तो बी 3 महीने 3 महीने गेटो 4 हट 4 तक जावे
2: अच्छा
3: आन जे जमानो कच्चो हुए आन कारी के एड़ी बखत आयो जो को बार बार महीने वो हागे माल पर बैठो की करे
2: सही बात
3: आन वो उपरांत हमें नजदीकी मंडी चाल तो हरे की जानी हिम्मत को करे ना
2: हां सही बात
3: अन एक एक तो पूरी गाड़ी रो लोड वे कौन को ले रहो नो
2: सही बात
3: हम हतरा जणा रो माल भेळो करे
2: के पर मंडी रो अनुभव भी को
3: अनुभव मंडी रो भी के ना है मंडी रो आडत रो अनुभव नहीं को सिस्टम की है मंडी रो उरो अनुभव नहीं अन आज नयो को जान आले कद व्यापारी तो मनबल बड्डा होए को हाथ तो हाथ मारे देखे भी एक गियो तो वार मनो कर मारे आडी से
2: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ये बताओ अपने तो ऊ ने ईर मैंने कोटो ज्यादा वे क्यों बुरती है बीजो ये तो पर उरो क्वालिटी में फर्क पड़े
3: क्वालिटी फर्क पड़े क्वालिटी अपन आलून करते भीका ने रून है ए भीका ने रून तेज दते
2: क्या उ भरत को
3: उए भरत तो कम होए पण उए में देख अपने ऊन में की है के कोई जे महरी कोई काली ऊन है वो भी जगह चले कोनी
2: अच्छा
3: वो काली ऊन बिल्कुल टाले और उए पर उए ऊन की ताकत थोड़ी लंबी है
2: धन्यवाद सर
0: तो भुजा मैंने देखो आप बहुत ही बढ़िया एक मोहनदान जी जी भेंटवार्ता आप बजाई आप सुनी किसान भाई सुनी और वीर सब लाभ भी ले से और किसान भाई तो देखो के आप और क्या कहने के जय जवान जय किसान वो माथे पूरे देश दार उमदार है तो अब बातचीत तो जारी रहे से एक गीत हो जावे बढ़िया तो अगर अपर भाईडा ना तो आओ एक समय बढ़िया

0: तो देखो बेटा, पूजा बहन अपन बहुत ही बढ़िया एक शुरू गीत। पूजा बहन देखो के समय जो को देख रहे हो आप, ये समय मीना अपन परंपरागत वनस्पति है वो आप पहले बात करिए धनुष नष्ट हो रही है,
1: जी
0: तो अपन खेतों मीना जो को भी जितनी बच्चोड़ी है तो वही रो आप विशेष ध्यान रखो। तो वही सो की है के आज समय में जो को बाजार देखो ना आप, वही रो बाजार बहुत बढ़िया है।
1: जी बिल्कुल
0: तो परंपरागत में अगर आप बात करो तो खेजड़ी है, केर है,
1: हाँ
0: पीलू है, लोणो है, ये सब चीजों है, ये जो को भी स्वादिष्ट व्यंजन बनने हैं। यो आज के समय में जो को भी जो आप देखो
1: हमारी
0: लोक
1: मांग बढ़ रही है।
0: लोक संस्कृति रा लोक बाग मेला लगे या कोई ओ हुई या ना भी देखो तो कोई शादी समारोह में ये बहुत ज्यादा मांग हो रही है।
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: ये वास्ते आप परंपरागत वनस्पति है, आप खेतों में स्वतः ही उगी उड़ी अपन उगा नहीं बीजत को मैं आप
1: बिल्कुल
0: उजाड़ रहे हूँ। तो
1: हमें
0: ये
1: बहुत ध्यान देना है।
0: हाँ, तो ये जो भी महिला बहनों किसान है उम्र, तो ये थोड़ी सी जवाबदारी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़िया पड़ेगी, क्योंकि उम्र वास्ते कृषि विज्ञान केंद्र महिला समूह बनाए हुए सरकारी माध्यम से उन्होंने ऋण बीजों भी मिल रहे हुए
1: जी
0: और वीर माध्यम से आप बाजार तक कौकर पुगे उभी वास्ते भी कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ माध्यम रखा है ताकि
1: रखिए
0: आप प्रोडक्ट है जो कौकर बढ़िया तरीके से बाजार तक पुगा सके। तो ये वास्ते आप परंपरागत वनस्पति है ये अपनों संरक्षण और संवर्धन करना है ताकि आने वाले टाइम में अपन जो प्रकृति के अनुकूल जो लड़ने वाली चीज है वो अपन खेतों वास्ते भी ठीक है, अपने वास्ते भी ठीक है और अपने पशुधन वास्ते भी
1: सही
0: ठीक है।
1: ठीक है, सही बात है।
0: तो ये वास्ते पूजा बहन अपन परंपरागत वनस्पति
1: आपको इसका संरक्षण करते हैं
0: कर जाए
1: और हमने तो आपको सीख
0: और
1: जाती गाय और बकर दे दिए पूरो
0: कर जाए
1: राम राम।
0: राम राम सा राम राम।
2: प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत।

0: कर। राम राम सा,
1: राम राम सा, मन जे अपना खुना नाले सगला सरता हमारा। राम राम।
0: हम जी कितने गए थे उनके सॉन्ग?
1: 200
0: है। अच्छा 200 डॉ रखे आज ये परिस्थिति में कौन करते उम्र पालन पोषण करो हमें जो है रखते हैं
1: हमारे वक्त अनुसार तो जाली तार मो हैंग अतिक्रमण ने ऐसा मो दिनों दिन जमीन कम रहती चारागाह तो रेज को नहीं
0: बिल्कुल
1: चारागाह नहीं रहने कारण तो मानो परिस्थिति असमझोते आलू है आज ई तो कादर दिन बड़े कीत बरहाड़ो घरे कटियो तो ही आलू कीत कटनो तो गर्मी नाम बड़े आउट ऑफ स्टेट बीजे राज्य में जानो पड़े परिस्थिति असमझो तो करे बेहनो पड़े की करे मजबूरी है चराने भी मुश्किल पाछो हर तरह देख रेख मुश्किल
0: तो की व्यवस्था करो मतलब
1: कटाई गेहूं चणो और सरसों।

0: तीन आरी फसल बुआई हुए लगभग जो को यहाँ हरियाणा कटाई है ना एक बार जनो एक बार एक महीनो दिन उचरना तो धान इज मिले लगभग
1: ठीक है
0: और पछे तो चार हरी भूख है को बखर निकले
1: ना को दे
0: ना ना कोई को दे ना को दे तो बिठाड़ हार कोई तो हम मानो खुद ना निमंत्रण करेगा आज मार के तुम बैठा तो मैं थोन उतर आटो दे चा खाण दे ऐसा वहीं बोए कभी परिस्थिति लेट हुए तो कोई नहीं हुए तो खुदरे स्तर माथे रहना पड़े।
1: अच्छा महीनों दिन तो है थोन जरे पछे
0: पछे चारे भूख है को
1: चार गुणी
0: रात कोई पार्टे बार ले रही चोर है कोने बार ले पार्टे कोई माथे पड़े तो वो चोरी है सावधानी रखनी पड़े रात भर पैर देना पड़े हर तरह परेशानी है चुके है हमें महंगे आड़ो जमानो महंगे आड़े जमाने में दिनों दिन डीजल महंगो हुए जब हमारे किराया महंगा पड़े किराए गाड़ी और किराए ये तो बिजन पैदल तो ले जाना काबू
1: अच्छा पैदल क्यों कुल जाए जी
0: पैदल यहाँ कुल जाए जाए कि हम हर जगह चारा का है कोनी रोड़ों में व्हीकल बैंड दे कोनी
1: सही बात
0: ले जाओ की ये कारण एक लंबी भाव में ये तो कम हो कम में हरियाणा में जहाँ 800-900 किलोमीटर हुए
1: बरबर
0: 900 किलोमीटर पैदल थोड़ी जाले
1: जाते
0: सही चीज तो हर भले कोई उद्योग करो वो तीन पहलू है पहलो उत्पाद बीजो देख रेख मैनेजमेंट तीजो मार्केटिंग
1: ठीक है
0: सही चीज तीन पहलू
1: जी
0: हमें वो उत्पाद आड़े तो आप नस्ल री कोशिश करो बैंड आलैंडी ऊन आलो हुए मांस आलो हुए दूधारू हुए हरी आलो हुए ये ऐसा वहां चयन कर कर ना उत्पाद रे तोर माथे बेहतर हम जहाँ पे
1: बरबर
0: हाँ पछे है तो उगरी देख रेख है तो मौसम अनुसार वो ना भाई सर्दी और मौसम है नवंबर दिसंबर में तो उगर पीपीआर का टीका लगाओ तो भेड़ माता का टीका लगाओ हर तरह टाइम टाइम माथे आयुर्वेदिक वे जो चिंचड़ गडो ईर हारो वे तो ईर टाइम टाइम हो जो पेड़ शिकायत देखे तो ऊन खोहनी शुरू हुए भी चिंचड़ हुए तो उगना जो को हमें ये आयुर्वेदिक में की है गडेरा 2 ml देनो पड़े जो को उवे में की है के टाइम ओ टाइम देता जावे
1: हमें उरे अपने जो अंतरजीवी है परजीवी है हां परजीवी रे बगा अपन कई की टाइम ये टीको लगाना पड़े
0: परजीवी रे लिए जो है कोई शिकायत हो तो लगावे
1: अच्छा अब धड़ी छा पड़े तो
0: धड़ी छा हैंग पड़े
1: जे शिकायत हुए तो
0: शिकायत हुए तुरंत लगाओ
1: अच्छा तुरंत लगाते वो मर जावे
0: हां वे यहां के 2-3 दिन रो पीरियड हुए तो टाइम वो अपने आप नष्ट हो जाए
1: नष्ट हो जाए
0: और ये जो आयुर्वेदिक टीका है ना एक वो लोकल कंपनी आवे वो जो को तो कम इज वे वो
1: डोज हां प्रभावी कंपनी
0: वे प्रभावी

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आपने सुना शहनाई वादन राग विहार उस्ताद बिस्मिल्ला खान द्वारा। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली पेशकश है फिल्म आशिकी से।

0: घर की भीगी भागी सी क्या घर से भाग के आई है।
1: ये लड़की भीगी भागी सी क्या घर से भाग के आई है।
2: ये लड़की नहीं है नागिन है जो नींद से जाग के आई है।

करता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मानता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम सुनेंगे कुछ गजलें।

0: मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला 9 बजे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीपीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों

0: भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ

0: पुलिस स्थित खड़क वासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VBGRAMJI Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added, the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged the students to become agents of social transformation, saying education should go beyond securing employment and help strengthen society, culture, traditions and economic progress. She said every educated youth should help bring forward those left behind and contribute towards achieving the goal of a developed India by 2047.
5: वर्ष 2047 विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक शिक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्त करे और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
4: Union Education Minister Dharmendra Pradhan urged students to become job creators rather than job seekers and said universities should lead innovation to help realize the vision of a developed India by 2047. The Indian Railways will launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. The Railways has approved the doubling of over 44-kilometer Mansi-Sahasa section of East Central Railway at a cost of 499 crore rupees. It will augment line capacity, improve operational efficiency and cater to the growing demand for passengers and freight movement on this important route. The Railways has also sanctioned a project for the replacement of relay-based interlocking with electronic interlocking at 27 stations or cabins on the high-density network and highly utilized network routes of Asansol Division of the Eastern Railway. The sanctioned work includes the replacement of 28 relay-based interlocking installations. It will cost over 432 crore rupees. The Railways has approved the provision of balanced 48 fiber optical fiber cable across Southeastern Railway at a cost of about 200 crore rupees. The move will strengthen the digital communication backbone of the railways network in the country. Union Home Minister Amit Shah today launched the Foreign Contribution Regulation Act 2.0 portal and the electronic Overseas Citizen of India card in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that both initiatives will improve citizen services and address the difficulties faced by those receiving donations through the FCRA portal. He said when the intention is clear, the policy is transparent and there is a mindset to embrace technology, then all forms of governance becomes easier for honest people. He underlined that a strict surveillance system is established against wrongdoers and the country becomes increasingly secure. The Home Minister informed that the new system will bring great convenience to more than 50 lakh OCI cardholders. He added that after 20 years, when a new passport is issued, there will be no need to reissue the OCI booklet and the cardholder's registration number will remain unique. General Dheeraj Seth took charge as the 31st Chief of the Army Staff from General Upendra Dwivedi, who superannuated after more than four decades of distinguished service to the nation. General Seth is an alumnus of the National Defence Academy, Pune, and was commissioned into the Armoured Corps in December 1986. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The Special Intensive Revision SIR of Electoral Rolls has begun in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra today as part of the exercise in Delhi.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दीवाना फिल्म से ये गीत। इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत में आज आप सुनेंगे सीमा मिश्रा के गाए कुछ लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम शामी गजल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे तलक अजीज की गाई कुछ गजलें।

जान मुनि को कर दे थोड़ा कम। कब तक छत पर प्यार करेंगे चुप चुप के अब हम। चंदा तेरी चांदनी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तलक अजीज की गाई कुछ गजलें एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

करके खुशियाँ ना भूला। खुशियों में धोने को दिल आज जाने क्यों बेताब दे।

0: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात जब सघन गगन से गरज उठी सावन की घटा, घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार या थी वो कटार, करके सिंगार चली उस पार, जहां थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम रमक झुम झुम चमक झुम झुम
1: कारी कारी कारी अंधियारी की रात, एक दिन

सानाना सानाना पावना चले झनाना झनाना झांझरा बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले हौले हौले नया न झुके पद न रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन बुरी चले झुम झुम झुम झमक झमक झुम झुम झुम झमक झमक झुम झुम झुम झमक झमक।

रखना है गोदी के थानों का प्राण पक्षिया। सन में लगन लगी मन में अगन जगी, बंद किए दोना नैना उभारे, प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे, चली है वो सांसों की डोर सहारे। झुम झक झक झुम झक झक झुम झक झक झुम झक झक।

नदियाँ पहाड़ कर पार गोरी नार आई प्रीतम के द्वार अभिसार करने। पहियों में बांध अपने प्रीतम की साध लगी प्राणों में अमृत का प्यार भरने।

0: से नयन अधरों से अधर हृदय से हृदय जुड़े आज जुगल
1: जुड़ी अमर
0: है ये।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप पहले सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पजेशकियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेशकियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान के अमेरिका के साथ बने सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि ये जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500